नमस्कार नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने कबीर की वैचारिकता और उनके आज के समय में प्रासंगिकता को समझा। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसे कबीर ने दुनिया में सबसे ऊंचा माना है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। कबीर कहते हैं कि गुरु केवल अक्षर सिखाने वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वह चेतना की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक है। कबीर कहते हैं कि गुरु केवल अक्षर सिखाने वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वह चेतना की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक है। श्रोताओं, आज हम उस दुविधा की बात करेंगे जो हर साधक के मन में उठती हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने साक्षात ईश्वर खड़े हों और बगल में आपके गुरु। आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। कबीर ने इसी मीठी दुविधा को द समाधान दिया है। रिपीट, आप असमंजस में पड़ जाएं कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। कबीर ने इसी मीठी दुविधा का जो समाधान दिया वह पूरी मानवता के लिए कृतज्ञता का सबसे बड़ा पाठ है। गुरु

इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें पहले किसके पैर छूने चाहिए, और फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, मैं पहले गुरु पर न्यौछावर होता हूँ। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त हैं, वह हर जगह हैं, पर हमारी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। वह गुरु ही हैं जिसने हमारे विवेक की आंखों को खोला। गुरु वह प्रकाश बिंदु हैं जिसके बिना हम उसे विराट गोविंद का कभी पता ही नहीं चलता। इसलिए कबीर के लिए मार्ग अर्थात गुरु का महत्व गंतव्य अर्थात ईश्वर से पहले आता है। गुरु वह द्वार हैं जहाँ से ब्रह्म की यात्रा शुरू होती है। आज के समय में जब हमारे पास सूचनाओं का अंबार है पर दृष्टि नहीं है, तब कबीर की यह बात और भी जरूरी हो जाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भगवान अर्थात ज्ञान को पाने से पहले उस मनुष्य को पहचानना जरूरी है जिसने हमें सत्य का रास्ता दिखाया। आज का चिंतन इस दोहे से ये निकलता है कि दोस्तों, आज के दिन बस एक पल रुककर सोचिएगा कि आपके जीवन का वो गुरु कौन है। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, आपका शिक्षक या आपका कोई अनुभव। आज अपनी सफलता का श्रेय उस मार्गदर्शन को दीजिए। आज अपनी सफलता का श्रेय उस मार्गदर्शन को दीजिए। सत्य की खोज से पहला कदम गुरु का हाथ थामना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड नंबर 91। बात तगता यू अटैक्ड हिपोक्रेसी एंड यू रिजेक्टेड दोज रिलीजियस ट्रेडिशंस इन विच यू डिड नॉट फाइंड ट्रुथ। यू रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेद्स, बिलीव इन देम बिकॉज वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज इम्पॉसिबल थ्रू देम। यू अपोज टू द लिबरेशन ऑफ द सोल बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी ब्लाइंड, इट इज फ्लिम्सी, सो यू डिसाइडेड टू रिजेक्ट द आइडिया दैट मैन और द सोल ऑब्टेन्स सल्वेशन। यू परसीव्ड क्रेजी प्रोपेगेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, सो यू डिक्लेयर्ड सल्वेशन, लिबरेशन, सोल, मीन्स ऑफ सल्वेशन, रिलीजियस रिचुअल्स, यज्ञ, सेलिब्रेशंस एंड ऑल एज अनसाइंटिफिक। यू सॉ द क्रिएट डेल्यूजन अमंग ह्यूमन कम्युनिटीज। यू रियलाइज द क्रूक्ड अपॉर्चुनिटीज प्लॉट ऑफ दोज हु क्लेम मोनोपोली ऑफ रिलीजन, द सेल्फिश वंस एंड दोज हु कन्फ्यूज ह्यूमन कम्युनिटीज। यू कंडेम द चातुर्वर्ण सिस्टम। यू रिजेक्टेड चातुर्वर्ण अरेंजमेंट दैट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन मैन एंड मैन। इन द सेम वे यू रिजेक्टेड द मीडिएटर एजेंट्स बिटवीन मैन एंड गॉड। यू रिजेक्टेड देयर सेल्फ डिक्लेरिंग इरिडेशन एंड यू रिजेक्टेड देयर इग्नोरेंट स्कॉलरशिप। You rejected the imagination on which the sway of theism stood and rejected that God, the Lord, and those who run their life through all this. You rejected the basic supportive principle of the universe and belief in the permanence of Brahma and also belief in the soul because you saw that these concepts are unscientific, flimsy, bread-giving. So you rejected the belief in the samskar or rebirth of the soul. For the human welfare and for the development of rights, you consider the fictitious, selfish and bread-giving things as dangerous. You perceived they are insignificant in human life. Hence, you said, who am I? Where have I come from? Where am I going? The ideas like these are delusive. Which knowledge is attained through them? Which conscience is strengthened by them? So, you condemn illusory, chewing, journey of ignorance, rejected force over soul, because they cannot be proved. Still, through meanest mediation, you decline to call physical sensations, consciousness and science as soul. You decline the concept of soul. You declined nihilistic views of some priest and condemned their heretic views. You refuse the knowledge that informs about the beginning of universe and also refuse to accept that man is created by God and said birth of man takes from the mouth of someone called Brahma is absolutely wrong.

नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, उनका जो पसाय दान है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर मन में एक प्रश्न आया कि ये पसाया दान जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ये है क्या? इसके भी बारे में कुछ चर्चा होगी, क्योंकि मेरे जो मित्र है जो मराठी नहीं जानते या संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी के बारे में नहीं जानते, उनके जानकारी के लिए पसाय दान के बारे में कुछ चर्चा, कुछ चिंतन होना जरूरी है, ऐसे मुझे लगा। तो ये पसाय दान जो है मराठी में, उसके दो अर्थ निकलते मेरे ख्याल से। एक है प्रसाद, भगवान को हम भोजन देते हैं, और जब भगवान को भोजन अर्पण करते हैं संपूर्ण समर्पण भाव से, तो पूरा भोजन नहीं खाते वापस, थोड़ा सा प्रसाद जो है वो चखते हैं, और वो प्रसाद जो है जैसे एक्सट्रैक्ट है, वैसे 9000 ओवी, ओवी मराठी में कहते हैं, हिंदी में हम उसको चरण भी कह सकते हैं या लाइनर्स। तो ज्ञानेश्वरी 9000 चरण की या ओवी की थी, उसमें से 9 ओवी, 9 चरण, 9 लाइनर निकले, एक्सट्रैक्ट, वो प्रसाद है, ज्ञानेश्वरी का प्रसाद है पसाय दान। और दूसरा भी अर्थ है कि पसाय दान मीन्स मांगना, लेकिन ये मांगना जो है वो याचना नहीं है, भीख नहीं है, ये मांगना जो है वो जो बाप के पास बेटा जैसे मांगता है, हक से मांगता है, वैसे ये मांगना है। और मांगना किसके लिए है? खुद के लिए नहीं, मांगना जो है ना मेरे देश के लिए है, ना मेरे गांव के लिए है, ना मेरे भाषिकों के लिए है, लेकिन मांगना जो है विश्व के लिए है। इसलिए ज्ञानेश्वर जी को माउली कहते हैं। आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर एक पुरुष थे, और माउली मां किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। फिर भी सिर्फ एक ही संत ऐसे है कि जिनको हम माउली कहते हैं, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर। और ये माउली ने क्या मांगा है, क्योंकि मांगना भी एक कला है, और ये कला जो है वो माता के पास ज्यादातर रहती है। इसकी एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मजे की बात है, उसमें ऐसे नहीं है कि कोई पुरुष या स्त्री का भेद है। एक इंसान आदमी खेत में बैठा था, काम करके थक चुका था, और तंबाकू मल रहा था। अभी मलते मल तंबाकू मलने की सोच रहा था, तंबाकू हाथ में लिया और सोच रहा था कि मेरा ये जिंदगी बहुत बदतर है, ये गरीबी मेरी कैसे दूर हटेगी, ये भगवान भी है या नहीं है पता नहीं, अगर है और मेरे सामने आ गए तो मैं क्या मांगू उनसे, कितना मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहा था। और तब तक भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा, बेटा मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। देखो, अभी मांगने की तैयारी नहीं है, इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हाट इज टू बी आस्क्ड, और इफ वी डोंट नो व्हाट इज टू बी आस्क्ड। वो बेचारा जैसे भगवान सामने खड़े हो गए, डर गया या संभ्रमित हो गया या कंफ्यूज हो गया और भूल गया कि क्या मांगना था। देखा तंबाकू हाथ में थी, चूना था वो सूखा हो गया था, पानी नहीं था,
झट से उसने कह दिया, कुछ नहीं भगवान, वो चूना जरा सूखा है, उसमें थोड़ा गीला होता था तो अच्छा होता था। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान अंतर्धान हो गए, गुप्त हो गए। क्या मिला? सिर्फ चूना मिला। और इसलिए कहते हैं, क्या मांगना है भगवान से उसकी भी सोच चाहिए, समझ चाहिए। और माताओं के पास बहुत अच्छी रहती है। ऐसी एक माता की कथा है, माता का जो पति था वो अंधा था, गरीब थे, कैसे मांगना है इसके बारे में कथा है। पति था, अंधा था, गरीब था, और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और माता को पूछा, माता मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, लेकिन एक ही वर चाहिए, दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। माता ने क्या मांगा? माता ने मांगा, भगवान मैं और मेरे पति, हम दोनों, हमारे पोते को खुद के हाथों से, हमारा मेरे पति का राजमुकुट पोते को उनके बेटे द्वारा पहनाते हुए देख सकेंगे, यही हमें दो। क्या क्या मिला? एक ही वर से गरीबी थी वो दूर हो गई, उनका जो पति था वो उसे राज्य मिल गया, अंधा था, अगर उसको पोते को देखना है तो दृष्टि भी आनी चाहिए, तो और उम्र भी लंबी हो गई क्योंकि पोते को राज्य भाग्य मिला और खुद ने पहनाया बेटे द्वारा, तो क्या क्या हो गया? बेटा भी हो गया, दृष्टि भी आ गई, राज्य भी मिल गया। तो ऐसी भगवान से मांगना है, सूझबूझ समझ से मांगना है, और ये समझ माउली ने दिखाई। माउली ने पसाय दान में भगवान से क्या मांगा है? हम सिर्फ लाइन पढ़ते रहेंगे तो लगेगा कि उसमें इतना डेप्थ नहीं आएगा, लेकिन हर शब्द में जो विजन उन्होंने दिखाया है, तो मुझे लगता है इस धरती पे स्वर्ग लाने के लिए भगवान से माउली ने मांगा है पसाय दान में। ये कैसे मांगा है उसके ऊपर विवेचन चिंतन अगले भाग में करेंगे। ये दूसरा भाग यहाँ ही समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।

0: यानी कि मैं किन मान्यताओं को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये तो पूरा का पूरा मेरी सोच जो है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन जीने का जो तरीका है वो मेरी मान्यताओं पर ही खड़ा है। कैसे अब उनको देखना है और कैसे उन्हें बदलना है, ये पूरी श्रृंखला का हमारा जो है वो आस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आज बातचीत करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स पर एक बार फिर से, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवारी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक और लहर चल पड़ी है सिस्टर शिवानी, और हमारे पास जिस तरह के मेल्स भी पहुंचने लग गए हैं। बार बार हम यही कहते हैं आपकी का मंच है तो फिर अपने मंच पर खुले मन से बात करते हैं, तो अब ढेरों बिलीफ सिस्टम्स आने लग गए हैं। और फिर ये कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है या ये ट्रुथ है। आपने एक बात हमें कही थी, अगर पिछली कड़ी को याद करें, कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग जो है वो ठीक है, अच्छी की फीलिंग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं है, मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक है। और अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, चेक द बिलीफ सिस्टम। बहुत से लोगों ने किया है। अब ये बिलीफ सिस्टम जो है, जो जिस पर मैं काम कर रही थी, वो वर्क कैसे करता है, यू नो, चेंज कैसे करना है, ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा और इस पर हम डेफिनेटली, मतलब इस पर डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये बिलीफ सिस्टम, जैसे कोई भी है, अगर मेरा कोई भी बिलीफ है, वो मेरी हैप्पीनेस को कैसे ले लेता है?
1: जो बिलीफ सिस्टम है उसी के आधार पर ही थॉट्स क्रिएट होंगे ना। लेट्स से चलो हमने पिछली बार कई बड़े बड़े बिलीफ, छोटे छोटे सिंपल बिलीफ देखते हैं। इवन ए सिंपल बिलीफ लाइक आज के समय में चिंता होना तो नेचुरल है, यू नो, कि तनाव तो नेचुरल है। अब ये मेरा बिलीफ है कि तनाव तो नेचुरल है, तो सारा दिन में जितनी बार भी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी या टेंशन या वरी, आई विल एक्सेप्ट इट एज
0: ये कुछ गलत नहीं हो रहा है,
1: ये गलत नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है,
0: डिस्टर्बेंस इज ओके,
1: इज ओके। एंड फिर मैं अपने आप को छोटी छोटी बातों में टेंस्ड होना भी परमिशन दे देती हूँ कि इट इज ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अलाउड टू स्मोक, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी उसके बारे में, स्मोकिंग तो मेरे लिए ठीक है, इट्स अलाउड टू डू इट, तो आई डू इट वेरी इजीली। लेकिन जो नहीं करता है तो वो नहीं करता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक। सिमिलरली इफ आई क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम, पीस इज नेचुरल। अभी तक मेरा बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल,
0: एंगर, छोटे छोटे एंगर तो ठीक है ना?
1: तो अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है एंगर इज नेचुरल, तो फिर मैं गुस्सा करने से पहले दो बार सोचूंगी तो नहीं ना, एंगर इज नेचुरल, तो थॉट कैसी क्रिएट होगी वैसे ही होगी, फिर वो आगे बिहेवियर में आएगी। अब एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एंगर इज नेचुरल के साथ हम कहाँ पहुंचे। गुस्सा करने की हमें आदत सी पड़ती गई और हर बार करके मेरे अंदर ही वो दर्द क्रिएट हुआ। एक दिन के लिए एक्सप्लोर करें एक नया बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इज पीस इज नेचुरल। और कैसे पता चलेगा विच वन इज नेचुरल? जो हमें कंफर्टेबल फील करता है। आज भी कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन हर एक को अच्छा क्या लगता?
0: पीस, शांति मांग ही रहे होते ना, ढूंढ रहे होते।
1: तो अभी हम शांति मांग रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है कि शांति हमें मांगनी है, शांति हमें कहीं बाहर से, खुशी भी हमें बाहर से ढूंढनी है। अब मेरा ये बिलीफ है कि खुशी बाहर मिलती है, तो मैं ढूंढूंगी कहाँ? बाहर ही ढूंढूंगी। मैंने ये तो बिलीफ कभी क्रिएट ही नहीं किया कि खुशी तो मेरी अपनी इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट है। तो जिस क्वालिटी का बिलीफ, उसी क्वालिटी की फिर थॉट क्रिएट होती। तो एक दिन हम एक सिंपल न्यू बिलीफ से एक्सप्लोर करते, पीस इज नेचुरल, एंगर इज अननेचुरल, लेकिन एंगर पे नहीं मनन करेंगे, तो हम कहते पीस इज नेचुरल, पीस इज माय नेचर, हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज माय नेचर। तो ये बिलीफ लेकर अब सारा दिन चलो, तो एक दिन में मैजिक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ हमारे थॉट पर वर्क करेगा। अब मुझे अगर गुस्सा आएगा, या अगर मैं गुस्सा, सी अभी तक गुस्सा आएगा तो गुस्सा आएगा नहीं, अब अगर मैं गुस्सा करूंगी तो आई विल इमीडिएटली टेल माई सेल्फ गुस्सा मेरा नेचुरल नहीं है।
0: Oh, amazing, you know, गुस्सा आएगा मतलब क्योंकि कोई और कर रहा था,
1: सी हाउ डीप रूटेड इट इज, हाउ डीप रूटेड इट इज, बट नाउ इमीडिएटली वी कैन चेंज। गुस्सा अब जब हम क्रिएट करेंगे तो हम तुरंत अपने आप को कहेंगे दिस इज नॉट नेचुरल। अभी तक पहले मैं कहती थी ये तो करना ही था ना, तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन था मेरे पास करने के लिए, तो मैंने वो संस्कार पर वर्क नहीं किया। अब हम कहेंगे कि नहीं, मुझे आया लेकिन स्टिल दिस आई कुड हैव डन विदाउट दिस, इनफैक्ट आई वॉन्ट टू डू इट विदाउट दिस. तो धीरे धीरे मेरा अटेंशन होगा उस पर, धीरे धीरे मेरा थॉट चेंज होगा, बट फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे बिहेवियर में आएगा. लेकिन गुस्सा जायज़ है, गुस्से से ही काम होगा, गुस्सा तो नेचुरल है, तो देन माई थॉट प्रोसेस विल वर्क ओनली.
0: इनफैक्ट अगर हम देखें बिलीव जो है वो एक थॉट ही तो है.
1: इट इज बट वेरी
0: इतना
1: इट इज अ डीप रूटेड फाउंडेशन थॉट जिसके ऊपर से बेसिस इसीलिए वो फंडामेंटल की क्वालिटी और भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती कि उसके आधार पर ही ये क्रिएट होंगे. अब जो इस थॉट को लेकर या इस बिलीफ को लेकर चलेंगे, एंगर इज नॉट हेल्दी या एंगर के बिना काम हो सकता है, तो उनको जब भी गुस्सा आएगा वो तुरंत किसको देखेंगे, अपने को देखेंगे, अपने पर काम करेंगे, और धीरे धीरे वो बिलीफ फिर उनकी डेस्टिनी बन जाएगा कि एंगर के बिना प्यार से काम करेंगे. हो सकता है लेकिन जब तक उधर ही चेंज नहीं किया इट विल नॉट वर्क.
0: अगेन आई थिंक इट शुड बी बिलीफ. माय बिलीफ लीड्स मी टू डेस्टिनी बेसिकली.
1: इट इज बिलीफ क्रिएट्स थॉट्स एंड देन थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी. एब्सोल्युटली.
0: तो समवेयर ये जो बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, कई सारे हमने बिलीफ्स लेकर देखे थे, उन्हें एक्सप्लोर किया था, आगे आने वाली कड़ियों में भी हम करेंगे कि क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स को देख रहे हैं कि दिन भर में मेरा इंडेक्स जो है वो स्टेबल है या कहाँ कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है. जो हमने कई चीजें देखी थी जो बिलीफ सिस्टम ही थे वो एक्चुअली कि मेरी हैप्पीनेस किस किस पर डिपेंड कर रही थी. ना जब मैंने ये कहा कि बाहर से आनी है तो मैंने देखा कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ मुझे हैप्पीनेस मेरी डिपेंड करती थी. मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया. आई डोंट नो डीप रूटेड गया कि नहीं, लेकिन ये एक थॉट, एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया एक्चुअली कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है.
1: अभी तक था साधनों से खुशी मिलेगी, अब हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है. दो बिलीफ सिस्टम
0: है, साधन है या नहीं है,
1: डिपेंडेंसी नहीं है उस पे. मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी अगर मेरे पास मोबाइल आज नहीं है. मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी मेरा मोबाइल अगर बाकियों के हिसाब से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है. साधन यूज करने के लिए है, लेकिन अगर वो साधन ही मुझे डिस्टर्बेंस का कारण बने तो वो बने तो लाए तो हमने सोचा था कि ये खुशी देंगे, लेकिन ये ही और ही. तो जैसे ही हम अपने बिलीफ्स को चेक करेंगे, अब नए बिलीफ के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें कि साधन है यूज करने के लिए, साधन कंफर्ट देते हैं, खुशी नहीं क्रिएट करते. नाउ एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस, एंड फिर अगर कंफर्टेबल लगे तो फिर उसको हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रुथ
0: एंड दिस इज माय न्यू बिलीफ सिस्टम.
1: दिस इज द ट्रुथ. एक है बिलीफ, एक है ट्रुथ
0: जो शाश्वत है. Yes. जो सच है.
1: Yes. जो हम कहते हैं ना, हमने कई बार कहा कि राइट और रॉन्ग एक्चुअली क्या है. तो राइट और रॉन्ग, यस वी से इट्स रिलेटिव, बट एक्चुअली इट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक मी कंफर्टेबल, दैट इज ट्रुथ फॉर मी. तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड इफ इट मेक्स मी कंफर्टेबल, देन इट्स नो लॉन्गर अ बिलीफ, दिस इज द ट्रुथ फॉर मी. यस, दिस इज व्हाट इज नेचुरल. फिर हमारे जीवन के वो जो फाउंडेशन लेयर है वो थोड़ी सी सेट होती जाएगी.
0: समवेयर वी रियली रीचिंग आउट टू द क्रक्स कि क्या है वो चीज जो अभी भी हम कहते थे ना कि वो फीलिंग या वो थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि वो नहीं चेंज हो पा रहा, क्योंकि डीप रूटेड मतलब जीवन भर हम उस पर चले होते हैं. एक और अब बिलीफ सिस्टम है या एक ट्रुथ है, क्या है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर रही होती है. या हम कहते हैं कि वी गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हेन वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी गो ऑन हॉलीडेज, या हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से होता है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से है, या किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं. यू नो दिस एक्चुअली गिव्स मी व्हाई वी go for movies.
1: Yeah.
0: You know, why we watch television also?
1: Why do we watch?
0: Because it gives us somewhere, you know, we feel good.
1: See, why do we watch television? Yeah, why do we watch a movie? Yeah, why do we want to go for a holiday? कि कहीं ना कहीं जो मेरे thoughts चल रहे हैं, उनकी quality बहुत pleasant नहीं है मुझे. Then I say,
0: take a break. You know, every time you're stressed out, go and take a break.
1: Absolutely. तो take a break क्या करना है actually मुझे? मैं चाहती हूँ कि मेरे वो वाले जो thoughts हैं, वो चले जाएं, एंड आई कैन यू नो बी मेंटली वेरी रिलैक्स्ड. लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब करने से, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गो फॉर अ हॉलीडे, टू वॉच अ मूवी, टू गो वॉच टेलीविजन, व्हाटएवर, लेकिन विद फुल अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या क्या फ़ायदा है. हम सोच रहे हैं ये करने से खुशी मिलेगी, वो हमें अपने आप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये करने से खुशी मिलती है आपको, खुशी आप क्रिएट कर पाते हैं. एक्चुअली अगर आप थोड़े दिन ध्यान से अपने आप को देखेंगे तो जितनी देर हम कुछ और करते हैं, हमारा मन वो हमारी थॉट, सपोज आज मेरा ऑफिस में किसी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन माई माइंड, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैं कल, अब मैं घर आई मैं टीवी ऑन कर दिया, राइट, टीवी में कुछ और टोटली डिफरेंट आई एम वॉचिंग, तो उतनी देर के लिए वो थॉट्स जो मेरे वो चली गई, तो क्योंकि वो थॉट्स चली गई तो मुझे लगा वो टीवी का वो प्रोग्राम मुझे खुशी दे रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ने क्या कर दिया था, मेरी वो जो पेनफुल वाली थॉट्स थी सारी, वो पेनफुल वाली थॉट्स थोड़ी देर के लिए वो रुक गई, तो मुझे तो आई फील बेटर, क्योंकि वो पेनफुल वाली थॉट्स तो मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए आई फॉरगॉट अबाउट इट, तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम ने मुझे खुशी दी, आई हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रोग्राम ने मुझे खुशी नहीं दी, वो थॉट्स को थोड़ी देर के लिए आउट कर दिया, जैसे ही प्रोग्राम ऑफ होगा वही वाली थॉट्स
0: वापस आने वाले,
1: वापस आ जाएंगे, कितनी देर प्रोग्राम देखेंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी बार हॉलिडे पर जाएंगे, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ अवॉइडिंग द इनर वर्क, क्योंकि हमें लगता है बस ये थोड़ी देर देख लिया वो सारी बातें भूल गई, एंड हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, कोई लोग उसके लिए शॉपिंग जाते हैं, कोई लोग
0: अपना
1: उसके
0: हर्ट दूर करने के लिए
1: भूलने के लिए, सी दैट इज द डिफरेंस, एक है भूलना एक है दूर करना, एक है उसको खत्म कर देना, तो कोई भी ऐसे माध्यम यूज करने से वो खत्म नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, क्योंकि एक और मीडियम आपके माइंड के ऊपर ओवर पावर करता है, तो एक यस द बेनिफिट इज देयर कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने वो थॉट्स को भूल जाती हूँ, लेकिन साथ साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम मेरे माइंड के ऊपर ओवर पावर कर देता है, एक तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ ये सीखने की कि कैसे मैं अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लूँ, ताकि मेरा मन के ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं हो, लेकिन जितनी देर हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी भी दिन अपने आप को वॉच करिएगा कि आपका माइंड टोटली उसके अंदर उसके साथ हो जाता है, अगर वहां कोई रो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर है, वहां कोई लड़ रहा है उसका इफेक्ट
0: कंप्लीटली हावी हो चुका होता है,
1: अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली कि मेरे मन की अपनी जो पावर है थॉट क्रिएट करने की वो फॉर द टाइम बीइंग पूरी बंद हो चुकी है, ये सिचुएशन जो इस टीवी स्क्रीन पर आ रही है ये सिचुएशन मेरे मन की थॉट्स को क्रिएट करती है, यहां मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है कि सिचुएशंस क्रिएट थॉट्स, दिस इज वेयर बिकॉज आई सी इट हैपनिंग प्रैक्टिकली कि मैं अपने मन का कंट्रोल पूरी तरह से उस सिचुएशन को जो अभी तो अक्रॉस द स्क्रीन है लेकिन उस सिचुएशन को पूरी तरह से दे देता हूँ, वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ, तो इतना मेरा मन पूरे उसके अंदर इनग्रोस्ड हो जाता है, तो उतनी देर क्या होता है मेरी माइंड की क्रिएटिविटी जो हम कह रहे हैं कि हमारे मन की इतनी पावर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन हमारे माइंड के अंदर पावर है अपने आप की थॉट क्रिएट करना, कि भले कोई सारे भी रो रहे हो मेरे आसपास मेरे मन के अंदर फिर भी ताकत है कि मैं उस समय स्टेबिलिटी की थॉट क्रिएट कर सकूं, लेकिन जितनी देर ये हम टेलीविजन या मूवी देख रहे हैं उतनी देर हमने क्या किया अपनी मन की पावर को दबाते गए, तो एक चीज है जिसको हमें धीरे धीरे से एक्चुअली एम्पावर करना है लेकिन हम उसको रोज और ही दबा देते हैं एंड रोज उसकी क्रिएटिविटी को फिनिश करते हैं,
0: क्रिएटिविटी टू क्रिएट माय ओन थॉट्स,
1: क्रिएटिविटी टू चूज माय ओन थॉट्स, क्रिएट तो हम कर ही रहे हैं, तो एक तरफ से हम वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर क्रिएटिविटी को अवेयरनेस के साथ हम अपनी थॉट्स क्रिएट करें और दूसरी तरफ से हम अपनी ही क्रिएटिविटी को खत्म करते जाते हैं, तो जहां तो हम एक तरफ से बात करते कि कोई भी सिनारियो में हमें डिटैच्ड होकर रहना है ताकि सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, पर अभी तो टीवी और मूवी का ही प्रभाव इतना पड़ रहा है,
0: पर उसमें मजा आ रहा होता है ना, उसमें वी गेट सो इन्वॉल्वड एक्चुअली, चाहे वो नॉवल की बात करते हैं, किताब की बात कर रहे हैं या फिर हम मूवी की बात कर रहे हैं या सीरियल्स की बात कर रहे हैं,
1: yes.
0: तो एक स्टिमुलेंट है, एक कहीं ना कहीं व्हाई वी लाइक इट सो मच,
1: बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट जो मेरे अंदर एक तो मेरी सी वो मेरे इनर वर्क को बंद कर देता है, आई डोंट हैव टू डू एनी इनर वर्क, वो जैसे कि मेरे सोचने का काम
0: वो करने लगता
1: है, वो करने लगता है, मुझे नहीं करना,
0: बने बनाए थॉट्स मुझे दे रहा है पैक कर करके,
1: सी नाउ दिस इज अ गुड वन, कि वो बने बनाए मुझे दे रहा है, अब यही थॉट प्रोसेस
0: के साथ नहीं बना रहा है मुझे, मुझे पैक कर करके खाना मिल रहा है, वाओ, यस,
1: तो मुझे मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, समवन एल्स इज डूइंग everything for me, क्योंकि वो someone else has taken over my whole mind power. तब हम कहते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए,
0: हमने सारे इमोशंस को जी लिया. yes. एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैं इस फिल्म में इतना खुश हुआ क्योंकि मैंने सारे इमोशन को जिया है.
1: सरसी, अब क्या, लेकिन विच इज ओके, आप देखें वो सारा, बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ही इफेक्ट फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है. अभी तो थोड़ी देर टीवी के एक्टर्स थे, लेकिन फिर जब रियल लाइफ एक्टर्स के साथ होंगे हम सारा दिन, तब भी अगर मेरे माइंड ने वो पावर गिव अप कर दी है कि आई गो इन टू माई लाइफ देन विद दिस बिलीफ सिस्टम कि सिचुएशंस मेरी थॉट्स को क्रिएट करती हैं, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर वो पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है. वाई डू वी से इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, कहते हैं ना इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कितना है आज के बच्चों पर. सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया?
0: ओह, इट मींस यू नो लाइक वो इतना स्ट्रॉन्ग आपका हैबिट बन जाती है,
1: क्योंकि वो आपके माइंड की थॉट को क्रिएट कर रही है ना. आप एक पर्टिकुलर सीरियल, एक
0: कार्टून देख रहे हैं बच्चे कंटिन्यूअसली.
1: अब कार्टून में भी आज अगर वायलेंस है, यू नो कार्टून में भी वायलेंस हो गया है, तो मैं वायलेंस देखता जा रहा हूँ. इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग थॉट्स. अब वो वायलेंस की इन्फॉर्मेशन लेते गए उसी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट होती गई, और हर रोज देखते देखते देखते हर रोज देख रहे हैं, तो वो मेरा क्या बनता जा रहा है? तो वही मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है, वही मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आता जा रहा है. तब कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया.
0: ओह, वी रियली नीड टू सी एक्चुअली, इफ आई रिपीट इट, इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर मी. कि मैं आज कोशिश ये कर रही थी कि अपने थॉट्स खुद क्रिएट करो. राइट, देखिए मेरे बिलीफ सिस्टम्स या वो बिलीफ जो मेरे साथ चल रहा था, वो एक थॉट इतना स्ट्रांग होता था कि उसको मैं ओवरपावर नहीं कर पा रही थी, नया थॉट नहीं क्रिएट कर रही थी. और आज मैंने अपने आप को ऐसी सिचुएशंस, ऐसे माध्यम दिए, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो सीरियल है, फिल्म है या नॉवल है, कि उस हर सिचुएशन ने मेरी क्रिएट करने की, थॉट क्रिएट करने की, सही थॉट चूज करने की जो पावर है उसको कुंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया.
1: एब्सोल्युटली. एंड उसमें भी अब क्या हो रहा है,
0: क्वालिटी,
1: इट इज हार्मफुल. यस, एंड इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग व्हेन क्वालिटी क्या है जो आप रोज देख रहे हैं. जब हमें ये समझ में आता है कि ये मीडिया हमारे थॉट पावर को कितना डीप इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह का प्रोग्राम, किस क्वालिटी का प्रोग्राम अंदर फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे थॉट्स को क्रिएट करना है.

0: सपोज, लेकिन इतने सब लोग अगर उसको रोज देखते जाएंगे एंड दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन माय थॉट्स, तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो मेरे मन में होना शुरू हो गया. टीवी का इम्पैक्ट घर पे नहीं है, टीवी का इम्पैक्ट हर एक के मन पर है और फिर वो हर एक की सोच वैसी बन. अगर मैं रोज एक सीरियल देखूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज तो घर के अपने ही परिवार वाले घर वालों को धोखा दे रहे, अगर मैं रोज रोज रोज ये देखूं, विल इट नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय थॉट?
1: डेफिनेटली. इवन न्यूज को भी अगर हम देखते हैं हर रोज चाहे वो पात्र बदल जाए, चाहे वो लोग बदल जाए, लेकिन वो न्यूज इतनी यही वाली हिट कर रही है,
0: वायलेंस वाली, फियर वाली, तो वो मेरी थॉट्स पर क्रिएट होगा. अगेन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस प्रोग्राम, क्यों अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि यहाँ हम एक डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं. अब जो एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे कि एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नेचुरल, फिर सुन सुन के क्या हुआ, उनकी थॉट पर उसका इफेक्ट पड़ा. एंड मेनी पीपल सेड लेट अस एक्सप्लोर कि गुस्से के बिना भी काम हो सकता था, लेकिन रोज अगर सीरियल देखेंगे जिसमें गुस्से से काम हो रहा है,
1: तो गुस्से पिक्चरें अभी तक यू नो लाइक ये जो बात है कि अंडरडॉग का जो वो होता है कि उसका जो है उसका वायलेंस, उसका दुख, उसका सब
0: इट इज अ डायलाइट
1: और ग्लैमराइज किया जाता है.
0: एब्सोल्युटली. तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना डीप इन्फ्लुएंस करता है.
1: यू नो इनफैक्ट आई हैड दिस मेजर बिलीफ सिस्टम कि जो पैसा है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है. पैसा इज सिन. And this is what the belief system had because of the films.
0: True, but which is not true.
1: Of
0: but
1: course,
0: actually,
1: but I understood it now.
0: Yeah. So this is not true. तो कहीं ना कहीं वो हमारा belief system बहुत influence होता है. तो भले आज हम TV देख रहे हैं, movies देख रहे हैं, और फिर हम सिर्फ अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे, see जितने छोटे हैं उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी तो अभी पावर ऑफ द माइंड डेवलप हो रही है कि कैसे थॉट्स क्रिएट करें.
1: और बड़ी बात आज यहाँ क्लियर ये होती है शिवानी कि ये हम सब कहते आ रहे हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए इतनी, टीवी इतना मत देखो. क्यों कहते हैं हम माँ बाप अपने बच्चों को, क्या हमें रीजन पता था? लेकिन आज अपने लिए भी तो रीजन पता चला. हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो देखना ही पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, हमें न्यूज़ तो देखनी है ना, हमें ये तो करनी है. और हम सिर्फ कहने के लिए कहते आ रहे थे आज तक अपने बच्चों को. आज अगर हम समझ के अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करें, तो टीवी से हम निकल तो नहीं पाते कंप्लीट.
0: नहीं, हम बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो क्योंकि हमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम वो उसी के सामने स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए या उनकी आईसाइट खराब होती है. वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर कितना पड़ता
1: है. हम कहते तो आते थे लेकिन कैसे पड़ता है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता था अभी तक.
0: अब अगर मैं इतनी देर टीवी, एक घंटा भी देखा सपोज, दो घंटा देखा, एंड माई माइंड बिकम्स एकदम यू नो ओवरपावर्ड बाय दैट, अब पढ़ने के लिए बैठो उसके बाद, वो माइंड तो नंब अवस्था में है अभी, फिर उसको एक्टिवेट करना और फिर उसको वो कंसंट्रेशन लेवल पर लेकर, उसने कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है, उसने वो एक घंटे के लिए कंसंट्रेट,
1: उसके बाद आप किताब खोल के बैठे हो, कंप्यूटर खोल के भी बैठे हो, कुछ
0: नहीं समझ रहा. इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स लाइक फिर उसको बहुत धीरे धीरे धीरे उसको वापस उस स्टेज पर लेकर आना पड़ता है. तो टीवी का इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे, क्रिएटिविटी इन द सेंस पावर टू चूज माई थॉट्स, उस पर इम्पैक्ट डालता है. एंड टुडे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत
1: तो
0: कुछ
1: हम सब इतने अच्छा. अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक इज दैट ये तो एंटरटेनमेंट वो ही जो मुझे सचमुच में आई वॉज गेटिंग इन्वॉल्व यू नो मे बी सीरियल्स थे या फिल्म्स थी, लेकिन आज जो रियलिटी शोज के नाम पर हमें देख परोसा जा रहा है और हम उसे देखने पे मजबूर हैं, क्या हमारी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम स्विच भी नहीं ऑफ कर पाते उसको. सोचते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं ये क्या दिखाया जा रहा है, ये ऐसा, ये मतलब सच के नाम पे क्या दिखा रहे हैं, शादी के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी शोज में बच्चों के साथ किस तरह का उनका परफॉर्मेंस, मतलब कितना एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है जो हम सबको तकलीफ दे रहा है,
0: लेकिन फिर भी हम सब बैठ कर
1: देख रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं उसको.
0: वो तो फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन यू नो आज का रात का एपिसोड, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वॉक पर जब आप जाएंगे, जॉगिंग जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, वो आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. तो वो नेगेटिविटी सिर्फ सुनने तक और देखने तक नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में इतनी बार
1: तो हमारा एडिक्शन ये हो गया है टीवी का कि हम ना चाहते हुए

0: समवेयर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं. आज बहुत सारी बातें जो हम समझते थे कि हमारे लिए गलत है या सोसाइटी की मर्यादाओं के हिसाब से हमने कहा कि दिस इज, आज उन्हीं बातों को बहुत ओपनली बात भी की जा रही है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसको कहीं ना कहीं एक सोशल एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, यू नो कि दिस इज ओके. एंड इनफैक्ट उसको इतना जब दुनिया से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है, सारे उसको प्रेज कर रहे हैं, तो हर एक का माइंडसेट कैसा क्रिएट होता जाएगा कि दिस इज ओके, पीपल आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. एंड जितना हम उस तरह का इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, हमारी सोच की क्वालिटी क्या होती जाएगी, हमारा राइट्स और रॉन्ग जो हम कभी कभी सोचते तो थे कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, अब तो शायद वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा.
1: सबसे बड़ी बात, हम ना देखना भी जाएं तब भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें इम्पैक्ट का नहीं पता, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माय माइंड. हम कहते हैं एक बार देखने में क्या हर्ज है, पता तो चले चर्चा किस बात की हो रही है, क्या है ऐसा इसमें, देखें तो क्या बात हो रही है, एंड देन वी स्टार्ट यू नो अप्रूविंग.
0: Yes, we do. And then our mind starts taking that, na? वो हमारे अंदर फिर, आज आप बच्चों का प्रोग्राम देख लो, तो बच्चे उसमें किस तरह से ड्रेस अप कर रहे हैं, बच्चे उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने वो गीत को कितनी बार देखा होगा कि वो लोग उसी तरह उसको इनैक्ट कर पा रहे हैं. एंड वी से इट्स ओके, ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो हमारे घर में बच्चे बैठ कर उसको देख रहे हैं. कल अगर बच्चे वही कपड़े पहनना चाहते हैं, फिर हम उसके लिए इतना बड़ा इशू बना दें घर पे. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो इन्फ्लुएंस तो हमने दिया था. और वो बच्चे ने देखा कि जब सामने उस आर्टिस्ट ने इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसको सबसे इतनी प्रेज मिली. एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस कि मुझे प्रेज चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए. और जब मैंने देखा इस चीज को एक्सेप्टेंस मिलती है, व्हाई विल आई नॉट ट्राई टू कॉपी इट इन माय लाइफ, तो फिर आई विल आल्सो वांट कि मुझे ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसे. बट समवेयर वी आर इंस्ट्रूमेंटल और ये सब कुछ खुशी के लिए हो रहा है.
1: Bottom line was khushi.
0: Khushi ke liye ho raha hai. So it's very, very important
1: entertainment
0: question.
1: Entertainment industry is giving me happiness. I have to really, really check this belief system.
0: And isko kahin na kahin ghar mein ek culture create karna hoga ki kya humne watch karna hai aur kitna usko watch karna hai aur kitna uska mere upar impact padne wala hai. Ye bahut important.
1: In fact, ab hame TV dekhna hi hai, hame picture dekhni hai. Kam se kam hum ye to tay kar sakte hain कि हम क्या देखें. यू नो दिस इज समथिंग विच वी रियली हैव टू थिंक. एंड नाउ अगर आपको बच्चों को भी मना करना है कि कितना टीवी देखना है, क्या देखना है, खुद को भी कहना है, हस्बैंड को भी कहना है, यू हैव अ पॉइंट. यू नो देयर इज अ लॉजिक. टुडे यू गेट दैट लॉजिक अपने लिए भी. अब आप कन्विक्शन से कह पाएंगे, कन्विक्शन से तय कर पाएंगे कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है. कोई सवाल, कोई मन में बात उठती है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ चाहते हैं कि शेयर करें, कोई सजेशन भी उठ रहा है, स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कहीं ना कहीं एक बहुत परिवर्तन की बात है और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम कि अभी तक ये था कि टेलीविजन ठीक है, मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस हाँ नहीं देखना चाहिए. आपने कहा कि आंखें खराब हो जाती हैं शायद या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाउ मच इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग, हमें कितना हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल पूरी सिचुएशंस पर जा रहा है और हमारी हैबिट बनती जा रही है. आने वाले जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम अपना कंट्रोल देते जाते हैं फिर. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. और आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम और कई बिलीफ सिस्टम्स को देखेंगे, किस तरह से वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे मैं बदल सकता हूँ उन्हें. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जिंदगी वो है जो काम आए किसी के, वरना तो इसे जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। श्रोताओं, मानवता सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इस संपूर्ण जीव जगत में अपने लिए तो हर जीव जीता है, लेकिन वक्त पड़ने पर किसी को सहारा दे देना, किसी के लिए खड़े हो जाना, किसी की सहायता कर देना ही मानव होने की निशानी है। लेकिन वो जो अपना संपूर्ण जीवन ही दूसरों को समर्पित कर दे, महामानव है। ऐसे ही महामानव थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हमने महात्मा कहा। गांधी जी का व्यक्तित्व विराट है। पूरी दुनिया उन्हें अपना कहती है और उन्हें अपनी तरह से बांचती देखती है। अपने समय की बहुत बड़ी शख्सियत थे गांधी, और अपने समय के बाद उससे भी बड़ी शख्सियत हो गए, क्योंकि आज गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, विचार बनकर किसी मंत्र की तरह पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। अपने समय में अपने करीबी लोगों से उनका जुड़ाव भी था, तो कभी द्वंद्व भी रहा। इसी आधार पर सबने अपनी सुविधा और भावनाओं के अनुरूप गांधी जी को चुना और अपनाया। गांधी जी एक हैं, लेकिन सबके होते ही वो अलग अलग हो जाते हैं। कभी साधारण मानव, कभी असाधारण चिंतक, कभी सहृदय मित्र, कभी कठोर पति, कभी अनन्य स्नेही, कभी राजनेता, जननेता, विचारक, सुधारक, तो कभी हठी, क्रोधी, तो प्रेमी भी। लेकिन उनके इन सारे रूपों के मूल में जो जमीन थी, वो मानवता की थी। हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उन्हें गढ़ने का काम किया दक्षिण अफ्रीका ने। पीटर मॉरिट्सबर्ग के सूने प्लेटफॉर्म पर जब वो फेंक दिए गए, तब सारी रात वो सो नहीं सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका अपमान हुआ था और उनका स्वाभिमान आहत हुआ था, बल्कि वो इस सोच में थे कि इस दुनिया में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, मनुष्य मनुष्य में ऐसा भेद कैसे हो सकता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। मानवीय करुणा से भरा वो हृदय था जो मानव और मानवता को सोचता हुआ उसके पक्ष में खड़ा हुआ। उनके लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं था। उनके जीवन से जुड़े ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ प्रसंगों की चर्चा। ये घटना उस वक्त की है जब सांप्रदायिकता की आग में नुआखली झुलस रहा था और गांधी जी शांति मिशन पर निकल पड़े थे। वो एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे, प्रार्थना सभाएं करते रहे। अपने साथ वो पवित्र पुस्तकें ले गए थे, इनकी शपथ दिलाते कि लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इतना ही नहीं, वो हर गांव में कुछ दिन रुक जाते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो शपथ ली गई है उसका पालन हो भी रहा है या नहीं। एक दिन एक गांव में प्रार्थना सभा चल रही थी कि अचानक एक मुस्लिम व्यक्ति ने उन पर हमला किया। उसने उनका गला पकड़ लिया। गांधी जी लगभग मूर्छित से होने लगे, लेकिन नीचे गिरने के दौरान कुरान की एक सुंदर उक्ति उनके मुख से निकली, जिसे सुनते ही वो व्यक्ति पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत गांधी जी के पैर छुए और माफी मांगी। उसने कहा, बापू, मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर दें, मैं अब आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। आप मुझे कोई काम सौंपिए, मैं जरूर करूंगा। गांधी जी करुणा से भरकर मुस्कुराए, कहा, तुम मेरा केवल एक काम कर दो, जब तुम यहां से लौटना तो किसी से मत कहना कि आज तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी, वरना ये दंगे फिर भड़क जाएंगे। बस इतना करना कि आज जो कुछ हुआ है उसे भूल जाना। इंसानियत की चिंता में डूबी ऐसी उदार और पवित्र सोच थी बापू की।

गांधी जी कहते थे कि मैं ईश्वर को मानवता की सेवा के जरिए पाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईश्वर न तो स्वर्ग में है न पाताल में है, वो हम सब में है और मानवता से दूर होकर उसे नहीं पाया जा सकता। यही मानवता, मनुष्य मात्र के लिए करुणा का भाव उनकी प्रेरक शक्ति थी। हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में कानून के एक छात्र के रूप में गांधी जी सूट बूट पहनते थे। 15 अप्रैल सन 1917 को जब वो चंपारण पहुंचे थे और दोपहर 3 बजे गाड़ी से उतरे, तब भी पूरी काठियावाड़ी पोशाक में थे, लेकिन आगे के जीवन में हम गांधी जी को सिर्फ धोती पहना हुआ पाते हैं और अपने जीवन के अंतिम समय तक परिधान के रूप में उन्होंने सिर्फ धोती ही पहनी। इसके पीछे भी एक मार्मिक प्रसंग है। चंपारण के किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने चंपारण की समस्याओं पर अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक टीम भेजी। इस टीम ने जो रिपोर्ट गांधी जी को सौंपी, उसमें वहां की महिलाओं की समस्याओं का कोई जिक्र नहीं था। रिपोर्ट देखकर गांधी जी ने कहा, महिलाओं की स्थिति जाने बिना किसी समाज की स्थिति हम कैसे जान सकते हैं? उसके बिना ये रिपोर्ट कैसे पूरी हो सकती है? उन्होंने इस बारे में जब पूछा तो जवाब मिला कि चंपारण एक पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां की महिलाएं बहुत संकोची और शर्मीली हैं, वो खुलकर बात नहीं करती, सामने भी नहीं आती। तब गांधी जी कार्यकर्ताओं की टीम लेकर चंपारण पहुंचे। महिलाओं से बात करने के लिए कस्तूरबा और अवंतिकाबाई गोखले को नियुक्त किया, लेकिन चंपारण की महिलाएं उनसे नहीं मिली, अपने दरवाजे तक उन्होंने नहीं खोले। घूमते घूमते शाम हो गई। बा ने एक दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सुबह से शाम हो गई, हम भटक रहे हैं, बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तब एक दरवाजा खुला और पानी का गिलास लिए एक महिला का हाथ बाहर आया। कस्तूरबा ने पानी पिया और गिलास लौटाते हुए कहा, दीदी, हमने पानी का गिलास थामे आपका हाथ देखा है, आपने हमारी प्यास बुझाई, क्या हम आपको नहीं देख सकते, आपसे बात नहीं कर सकते? अंदर की महिला टूट गई, रो पड़ी। वो उसने कहा, हमारे घर पर 3 महिलाएं हैं और पहनने के लिए एक ही साड़ी है, हम तीनों उस एक साड़ी को बांट कर पहनती हैं, अभी हम में से एक महिला बाहर गई है उसी साड़ी को पहनकर, इसलिए इस वक्त हम दरवाजा नहीं खोल सकती। कस्तूरबा रो पड़ी। उन्होंने कहा, दरवाजा बंद रखो, यही उचित है, लेकिन मैं कहूंगी तुम्हारे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, तुमने इस अवस्था में भी हमारी प्यास बुझाई। रिपोर्ट सौंपते हुए जब कस्तूरबा ने गांधी जी को यह घटना सुनाई तो उनका मन गहरी पीड़ा और करुणा से भर आया। उन्होंने अपना चोंगा उतारा और बा को दे दिया, कहा, ये उस औरत को दे देना। और उसके बाद आजीवन उन्होंने सिर्फ धोती ही पहनी। इस तरह उन्होंने एक फकीर का जीवन जिया।

0: करुणा गांधी जी के भीतर का मूल स्वर था। मानवता के पुजारी थे वो। उनकी चिंता सिर्फ देश की आजादी को लेकर नहीं थी, उनकी आंखों में उनके सपनों का भारत तो था ही, लेकिन हर मनुष्य के भीतर वो ईश्वर को देखते थे और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वो समाधान बनकर खड़े हो जाते थे। 1947 वो साल था जब भारत आजाद हुआ। वो संघर्ष जिसकी अगुवाई गांधी जी ने की थी, जाहिर है स्वाधीनता का स्वप्न लेकर ही इतनी लंबी संघर्ष यात्रा उन्होंने तय की थी। लेकिन 1947 के इतिहास के पन्नों में दो दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे गांधी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण को बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, उनकी करुणा के स्पर्श को महसूस किया जा सकता है। एक दृश्य में कलकत्ता में छाया घना अंधेरा है, सांप्रदायिकता की आग में इंसानियत जल रही है और गांधी जी अपनी करुणा का कोमल स्पर्श उन्हें दे रहे हैं, उनके बीच घूम घूम कर उन्हें समझा रहे हैं। और दूसरी ओर आधी रात को चमचमाती रोशनी में नहाई राजधानी दिल्ली है, जो देश के पहले स्वतंत्रता दिवस के सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही है। शानदार रोशनी, जोरदार नारे और देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू का काव्यात्मक वक्तव्य है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत में जीवन और स्वतंत्रता स्थापित हो रहे हैं और लंबे समय से शोषित राष्ट्र की आत्मा स्वतंत्रता का उद्घोष कर रही है। एक ओर जगमगाती रोशनी और दूसरी ओर सियाह अंधेरा, दो छोरों पर ये दो दृश्य हैं और स्वाभाविक रूप से गांधी जी उस अंधेरे को दूर करने के प्रयास में कलकत्ता में हैं। स्वतंत्रता दिवस के कुछ हफ्ते पहले पंडित नेहरू और सरदार पटेल का पत्र लेकर एक दूत दिल्ली से कलकत्ता भेजा गया, जहां गांधी जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं। आधी रात को दूत वहां पहुंचा, गांधी जी को उसने पत्र दिया। गांधी जी ने उसे अभी खोला नहीं, पूछा, क्या आपने भोजन किया? जब दूत ने कहा नहीं, तब गांधी जी ने उसे पहले भोजन परोसा और भोजन के बाद उन्होंने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, बापू, आप राष्ट्र के पिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वतंत्रता दिवस होगा और हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली आए। पत्र पढ़ने के बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए गांधी जी ने कहा, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण आग्रह है, जब बंगाल जल रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और मैं कलकत्ता के अंधेरे में उनकी बातें, उनके दर्द सुन रहा हूं। ऐसे में मैं कोई जश्न कैसे मना सकता हूं? बंगाल में शांति की स्थापना के लिए मुझे यहीं रहना होगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। अगली सुबह वो दूत वापस जाने को तैयार एक पेड़ के नीचे खड़ा था। गांधी जी उसे विदा करने आए, तभी एक सूखा पत्ता पेड़ से गिरा। गांधी जी ने उसे उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और कहा, तुम वापस दिल्ली जा रहे हो, मैं एक शक्तिहीन और निर्धन आदमी हूं, क्या दे सकता हूं? पहले स्वतंत्रता दिवस के उपहार के रूप में तुम ये सूखी पत्ती पंडित नेहरू और सरदार पटेल को मेरी तरफ से दे देना। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वो पत्ती गीली हो गई। गांधी जी ने स्निग्ध मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो ईश्वर कितने महान हैं। वो नहीं चाहते थे कि गांधी एक सूखा पत्ता उपहार स्वरूप भेजे, उन्होंने इसे गीला कर दिया। अब ये पत्ता भीगी मुस्कान से चमक रहा है। इस पत्ते को वो मेरे आंसू भरे उपहार के रूप में ग्रहण करें। इतना कहकर गांधी जी मुड़े और चल पड़े अपने अगले गंतव्य की ओर।
1: ये

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ला, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। देश को आजाद हुए अभी कुछ साल ही बीते थे। तत्कालीन रेल मंत्री मुंबई जा रहे थे। उनके लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर उन्होंने कहा, बाहर बहुत गर्मी है लेकिन ये डिब्बा काफी ठंडा है। उनके पीए ने जवाब दिया, जी सर, गर्मी तेज थी इसलिए इसमें कूलर लगवा दिया है। कूलर लग गया है? मुझे बताए बिना? आप लोग कोई काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्या बाकी जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? ये बहुत गलत काम हुआ है। आगे गाड़ी जहां भी रुके पहले ये कूलर निकलवाइए। इस तरह मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलवाने के बाद ही फिर गाड़ी आगे बढ़ी। आज भी उस डिब्बे में जहां कूलर लगा था लकड़ी जड़ी हुई है, जो उनके ऊंचे आदर्शों की याद दिलाती है। अपने समय के वो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का पूरा जीवन ही ऐसी अनेक प्रेरक घटनाओं से भरा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इस छोटे से शहर में उनकी स्कूली शिक्षा कुछ विशेष नहीं रही। कुछ समय बाद उन्हें वाराणसी अपने चाचा के घर रहने के लिए भेज दिया गया। घर पर सब उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। वे कई मील की दूरी पैदल नंगे पांव ही तय कर स्कूल जाया करते थे। भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थीं, तब भी उन्हें ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता था। जैसे जैसे उनकी समझ विकसित होने लगी उन्हें पराधीन भारत की दशा बेचैन करने लगी। जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे राजाओं की निंदा करते हुए भाषण दिया था तो वे इस निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। उस समय उनकी उम्र मात्र 11 साल थी लेकिन तभी से देश की सेवा का संकल्प उन्होंने ले लिया था। असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया और 16 साल के नन्हे यानी लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया। उनके इस निर्णय से परिवार में हड़कंप मच गया। मां की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन शास्त्री जी को तो भारत मां की उम्मीदों पर खरा उतरना था। गांधी जी के विचार उन्हें पुकार रहे थे। सभी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे। छोटे कद के कमजोर से दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री अपने संकल्प के साथ अडिग खड़े रहे। उनके करीबी भी ये जानते थे कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय बदलेंगे नहीं। बाहर से कमजोर दिखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह

वाराणसी के काशी विद्यापीठ में पढ़ते हुए शास्त्री जी महान विद्वानों और देशभक्तों के संपर्क में आए और इस वातावरण का प्रभाव ही था कि वे आजीवन राष्ट्र सेवा का व्रत ले चुके थे। वैसे बचपन से ही उनके विचार दूसरे बच्चों से अलग और सुलझे हुए थे। तभी तो जब वे मुगल सराय के स्कूल में पढ़ते थे तब उनका नाम लाल बहादुर वर्मा पुकारा जाता था। तब उन्होंने अपने हेडमास्टर से निवेदन किया कि उन्हें लाल बहादुर वर्मा न कहकर केवल लाल बहादुर ही पुकारा जाए। जब उनके हेडमास्टर साहब ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तब नन्हे से लाल बहादुर ने जवाब दिया, सर मेरा मानना है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और अपने नाम से होनी चाहिए, जाति और धर्म सूचक सरनेम से नहीं। और कमाल की बात ये थी कि नन्हे की बातें सुन उनके हेडमास्टर वसंतलाल वर्मा ने स्वयं भी अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटा दिया। आगे चलकर विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त स्नातक की डिग्री शास्त्री ही उनके नाम के साथ जुड़ गई और उनका पूरा नाम पुकारा गया लाल बहादुर शास्त्री। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ संपन्न हुआ। दहेज के नाम पर वो एक चरखा और हाथ से बुने कुछ मीटर कपड़े लेकर आईं, क्योंकि शास्त्री जी इससे अधिक कुछ चाहते ही नहीं थे। खादी से उनका प्रेम आजीवन रहा और किफायत उनकी जीवन शैली थी। खादी के फटे और पुराने कुर्ते उनकी आलमारी में सहेज कर रखे होते थे। वो कहते, जब नवंबर का महीना आएगा ना, जाड़े के दिन होंगे, तब ये काम आएंगे, क्योंकि तब मैं इनके ऊपर से कोट पहन लूंगा। आलम ये था कि फटे कुर्तों से वो अपनी पत्नी से कहकर रुमाल बनवा लिया करते थे। उनका मानना था कि बहुत मेहनत के साथ खादी बीनी जाती है, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। दरअसल गांधी जी का प्रभाव उन पर बहुत गहरा हुआ था। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की, तब भी शास्त्री जी इस संघर्ष में शामिल हुए। स्वाधीनता आंदोलन में अपनी सक्रियता के कारण वे कुल 7 वर्ष तक जेल में भी रहे और जब देश आजाद हुआ तब उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्दी ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। सन 1951 में जब वे नई दिल्ली आए तब केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार उन्होंने संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने निभाए। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। जब वे रेल मंत्री थे तब एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग मारे गए। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका जीवन ईमानदारी और उच्च आदर्शों का एक अनुपम उदाहरण है। समय के साथ जीवन बदल ही जाता है, लोग बदल जाते हैं, यहाँ तक कि समय की मांग की दुहाई देते हुए लोगों के आदर्श भी बदल जाते हैं। लेकिन शास्त्री जी के मन और विचारों पर संस्कारों की जो छाप पड़ी थी वो कभी नहीं बदली। वो उन्हीं जीवन मूल्यों और आदर्शों को भीतर सहेजे अपनी रौ में चलते रहे।

1964 में नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये वो समय था जब देश सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और दूसरी तरफ भयंकर सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्न संकट भी सामने था। इन्हीं हालात में सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध आरंभ हुआ। ऐसे समय में शास्त्री जी ने दृढ़ और जबरदस्त आंतरिक शक्ति के साथ देश का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के हमलों का जोरदार जवाब दिया। भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला और भारतीय सैनिक बरकी तक जा पहुंचे। इस स्थिति में अमेरिका से चेतावनी आई कि अगर युद्ध नहीं रुका तो भारत को गेहूं नहीं भेजा जाएगा, लेकिन शास्त्री जी का जवाब था, बंद कर दीजिए हमें गेहूं देना। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर सन 1965 को दशहरे के दिन रामलीला मैदान में देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की और खुद भी व्रत रखना शुरू कर दिया। युद्ध की परिस्थितियों से उबरने और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने जनता से हर खाली जगह पर खेती करने की अपील की और अपने सरकारी आवास के लॉन में खुद भी सब्जियां बोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेहनत प्रार्थना करने के समान है और पूरा देश उनके साथ इस प्रार्थना में शामिल हो गया। वो देश में शिक्षा सुधार के हिमायती थे, रोजगार के अवसर बढ़ें इसके लिए मूल्यपरक शिक्षा पर उनका जोर था। वो कहा करते थे कि जो लोग शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, अंततः जनता ही मुखिया होती है। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए 11 जनवरी सन 1966 को ताशकंद में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश सेवा को समर्पित अपने पूरे जीवन में शास्त्री जी उदात्त निष्ठा और क्षमता, दृढ़ संकल्प शक्ति, विनम्र, सहिष्णु और उच्च आदर्शों और जीवन मूल्यों से संपन्न एक महान राष्ट्र प्रेमी के रूप में पहचाने गए। सादा जीवन और ईमानदारी की अनूठी मिसाल थे शास्त्री जी। कितने यादगार प्रसंग जुड़े हैं उनके जीवन से। सरकारी खर्चे पर मिली कार का प्रयोग उनके अपने बच्चे नहीं कर सकते थे। एक बार उनके बेटे ने कार चला ली तो किलोमीटर का हिसाब कर उन्होंने पैसा सरकारी खाते में जमा करवाया। इसी तरह एक बार उनके घर पर सरकारी विभाग की ओर से कूलर लगवाया गया। उन्होंने ये कहते हुए कूलर हटवा दिया कि इलाहाबाद के हमारे पुश्तैनी घर में कूलर नहीं है, कभी धूप में निकलना पड़ सकता है, ऐसे आदतें बिगड़ जाएंगी। उनकी टेबल पर हमेशा हरी घास सजी रहती थी। वे कहा करते थे कि सुंदर फूल लोगों को आकर्षित तो करते हैं लेकिन कुछ ही समय में वो मुरझाकर गिर जाते हैं। घास वो आधार है जो हमेशा रहती है। मैं लोगों के जीवन में घास की तरह ही एक आधार और खुशी की वजह बनकर रहना चाहता हूं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

नमस्कार नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने कबीर की वैचारिकता और उनके आज के समय में प्रासंगिकता को समझा। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसे कबीर ने दुनिया में सबसे ऊंचा माना है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। कबीर कहते हैं कि गुरु केवल अक्षर सिखाने वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वह चेतना की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक है। कबीर कहते हैं कि गुरु केवल अक्षर सिखाने वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वह चेतना की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक है। श्रोताओं, आज हम उस दुविधा की बात करेंगे जो हर साधक के मन में उठती हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने साक्षात ईश्वर खड़े हों और बगल में आपके गुरु। आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। कबीर ने इसी मीठी दुविधा को जस समाधान दिया है। रिपीट, आप असमंजस में पड़ जाएं कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। कबीर ने इसी मीठी दुविधा का जो समाधान दिया, वह पूरी मानवता के लिए कृतज्ञता का सबसे बड़ा पाठ है।

इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें पहले किसके पैर छूने चाहिए, और फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, मैं पहले गुरु पर न्यौछावर होता हूँ। इससे हमें ये प्रतीत होता है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त हैं, वह हर जगह हैं, पर हमारी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। वह गुरु ही हैं जिसने हमारे विवेक की आंखों को खोला। गुरु वह प्रकाश बिंदु हैं जिसके बिना हम उसे विराट गोविंद का कभी पता ही नहीं चलता। इसलिए कबीर के लिए मार्ग अर्थात गुरु का महत्व गंतव्य अर्थात ईश्वर से पहले आता है। गुरु वह द्वार हैं जहाँ से ब्रह्म की यात्रा शुरू होती है। आज के समय में जब हमारे पास सूचनाओं का अंबार है पर दृष्टि नहीं है, तब कबीर की यह बात और भी जरूरी हो जाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भगवान अर्थात ज्ञान को पाने से पहले उस मनुष्य को पहचानना जरूरी है जिसने हमें सत्य का रास्ता दिखाया। आज का चिंतन इस दोहे से ये निकलता है कि दोस्तों, आज के दिन बस एक पल रुककर सोचिएगा कि आपके जीवन का वो गुरु कौन है। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, आपका शिक्षक या आपका कोई अनुभव। आज अपनी सफलता का श्रेय उस मार्गदर्शन को दीजिए। आज अपनी सफलता का श्रेय उस मार्गदर्शन को दीजिए। सत्य की खोज से पहला कदम गुरु का हाथ थामना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

एपिसोड नंबर 91। बाथ तगता यू अटैक्ड हिपोक्रेसी एंड यू रिजेक्टेड दोज रिलीजियस ट्रेडिशंस इन विच यू डिड नॉट फाइंड ट्रुथ। यू रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेद्स, बिलीव इन देम बिकॉज वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज इम्पॉसिबल थ्रू देम। यू अपोज टू द लिबरेशन ऑफ द सोल बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी ब्लाइंड, इट इज फ्लिम्सी, सो यू डिसाइडेड टू रिजेक्ट द आइडिया दैट मैन और द सोल ऑब्टेन्स सल्वेशन। यू परसीव्ड क्रेजी प्रोपेगेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, सो यू डिक्लेयर्ड सल्वेशन, लिबरेशन, सोल, मीन्स ऑफ सल्वेशन, रिलीजियस रिचुअल्स, यज्ञ, सेलिब्रेशंस एंड ऑल एज अनसाइंटिफिक। यू सॉ द क्रिएट डेल्यूजन अमंग ह्यूमन कम्युनिटीज। यू रियलाइज द क्रूक्ड अपॉर्चुनिटीज प्लॉट ऑफ दोज हु क्लेम मोनोपोली ऑफ रिलीजन, द सेल्फिश वंस एंड दोज हु कन्फ्यूज ह्यूमन कम्युनिटीज। यू कंडेम द चातुर्वर्ण सिस्टम। यू रिजेक्टेड चातुर्वर्ण अरेंजमेंट दैट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन मैन एंड मैन। इन द सेम वे यू रिजेक्टेड द मीडिएटर एजेंट्स बिटवीन मैन एंड गॉड। यू रिजेक्टेड देयर सेल्फ डिक्लेरिंग इरिडेशन एंड यू रिजेक्टेड देयर इग्नोरेंट स्कॉलरशिप। You rejected the imagination on which the sway of theism stood and rejected that God, the Lord, and those who run their life through all this. You rejected the basic supportive principle of the universe and belief in the permanence of Brahma and also belief in the soul, because you saw that these concepts are unscientific, flimsy, bread-giving. So you rejected the belief in the samskar or rebirth of the soul. For the human welfare and for the development of rights, you consider the fictitious, selfish and bread-giving things as dangerous. You perceived they are insignificant in human life. Hence, you said, who am I? Where have I come from? Where am I going? The ideas like these are delusive. Which knowledge is attained through them? Which conscience is strengthened by them? So, you condemn illusory, chewing, journey of ignorance, rejected force over soul, because they cannot be proved. Still, through meanest mediation, you decline to call physical sensations, consciousness and science as soul. You decline the concept of soul. You declined nihilistic views of some priest and condemned their heretic views. You refuse the knowledge that informs about the beginning of universe and also refuse to accept that man is created by God, and said birth of man takes from the mouth of someone called Brahma is absolutely wrong.

नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, उनका जो पसाय दान है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर मन में एक प्रश्न आया कि ये पसाया दान जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं ये है क्या, इसके भी बारे में कुछ चर्चा होगी। क्योंकि मेरे जो मित्र है जो मराठी नहीं जानते या संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी के बारे में नहीं जानते, उनके जानकारी के लिए पसाय दान के बारे में कुछ चर्चा, कुछ चिंतन होना जरूरी है, ऐसे मुझे लगा। तो ये पसाय दान जो है मराठी में, उसके दो अर्थ निकलते मेरे ख्याल से। एक है प्रसाद, भगवान को हम भोजन देते हैं, और जब भगवान को भोजन अर्पण करते हैं संपूर्ण समर्पण भाव से, तो पूरा भोजन नहीं खाते वापस, थोड़ा सा प्रसाद जो है वो चखते हैं, और वो प्रसाद जो है जैसे एक्सट्रैक्ट है, वैसे 9000 ओवी, ओवी मराठी में कहते हैं, हिंदी में हम उसको चरण भी कह सकते हैं या लाइनर्स। तो ज्ञानेश्वरी 9000 चरण की या ओवी की थी, उसमें से 9 ओवी, 9 चरण, 9 लाइनर निकले एक्सट्रैक्ट, वो प्रसाद है, ज्ञानेश्वरी का प्रसाद है पसायदान। और दूसरा भी अर्थ है कि पसायदान मीन्स मांगना, लेकिन ये मांगना जो है वो याचना नहीं है, भीख नहीं है, ये मांगना जो है वो जो बाप के पास बेटा जैसे मांगता है, हक से मांगता है, वैसे ये मांगना है। और मांगना किसके लिए है? खुद के लिए नहीं। मांगना जो है ना मेरे देश के लिए है, ना मेरे गांव के लिए है, ना मेरे भाषिकों के लिए है, लेकिन मांगना जो है विश्व के लिए है। इसलिए ज्ञानेश्वर जी को माउली कहते हैं। आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर एक पुरुष थे, और माउली माँ किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। फिर भी सिर्फ एक ही संत ऐसे है कि जिनको हम माउली कहते हैं, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर। और ये माउली ने क्या मांगा है, क्योंकि मांगना भी एक कला है, और ये कला जो है वो माता के पास ज्यादातर रहती है। इसकी एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मजे की बात है, उसमें ऐसे नहीं है कि कोई पुरुष या स्त्री का भेद है। एक इंसान आदमी खेत में बैठा था, काम करके थक चुका था, और तंबाकू मल रहा था। अभी मलते मल तंबाकू मलने की सोच रहा था, तंबाकू हाथ में लिया और सोच रहा था कि मेरा ये जिंदगी बहुत बदतर है, ये गरीबी मेरी कैसी दूर हटेगी, ये भगवान भी है या नहीं है पता नहीं, अगर है और मेरे सामने आ गए तो मैं क्या मांगू उनसे, कितना मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहा था। और तब तक भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा, बेटा मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। देखो, अभी मांगने की तैयारी नहीं है, इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हाट इज टू बी आस्ट, और इफ वी डोंट नो व्हाट इज टू बी आस्ट। वो बेचारा जैसे भगवान सामने खड़े हो गए, डर गया या संभ्रमित हो गया या कंफ्यूज हो गया और भूल गया कि क्या मांगना था। देखा तंबाकू हाथ में थी, चूना था वो सूखा हो गया था, पानी नहीं था,
झट से उसने कह दिया, कुछ नहीं भगवान, वो चूना जरा सूखा है, उसमें थोड़ा गीला होता था तो अच्छा होता था। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान अंतर्धान हो गए, गुप्त हो गए। क्या मिला? सिर्फ चूना मिला। और इसलिए कहते हैं, क्या मांगना है भगवान से, उसकी भी सोच चाहिए, समझ चाहिए। और माताओं के पास बहुत अच्छी रहती है। ऐसी एक माता की कथा है। माता का जो पति था वो अंधा था, गरीब थे, कैसे मांगना है इसके बारे में कथा है। पति था, अंधा था, गरीब था, और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और माता को पूछा, माता मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, लेकिन एक ही वर चाहिए, दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। माता ने क्या मांगा? माता ने मांगा, भगवान मैं और मेरे पति, हम दोनों हमारे पोते को खुद के हाथों से, हमारा मेरे पति का राजमुकुट पोते को उनके बेटे द्वारा पहनाते हुए देख सकेंगे, यही हमें दो। क्या क्या मिला? एक ही वर से गरीबी थी वो दूर हो गई, उनका जो पति था वो उसे राज्य मिल गया, अंधा था, अगर उसको पोते को देखना है तो दृष्टि भी आनी चाहिए, तो और उम्र भी लंबी हो गई क्योंकि पोते को राज्य भाग्य मिला और खुद ने पहनाया बेटे द्वारा, तो क्या क्या हो गया? बेटा भी हो गया, दृष्टि भी आ गई, राज्य भी मिल गया। तो ऐसी भगवान से मांगना है, सूझबूझ समझ से मांगना है, और ये समझ माउली ने दिखाई। माउली ने पसाय दान में भगवान से क्या मांगा है? हम सिर्फ लाइन पढ़ते रहेंगे तो लगेगा कि उसमें इतना डेप्थ नहीं आएगा, लेकिन हर शब्द में जो विजन उन्होंने दिखाया है, तो मुझे लगता है इस धरती पे स्वर्ग लाने के लिए भगवान से माउली ने मांगा है पसायदान में। ये कैसे मांगा है उसका ऊपर विवेचन चिंतन अगले भाग में करेंगे। ये दूसरा भाग यहाँ ही समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।

0: यानी कि मैं किन मान्यताओं को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये तो पूरा का पूरा मेरी सोच जो है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन जीने का जो तरीका है वो मेरी मान्यताओं पर ही खड़ा है। कैसे अब उनको देखना है और कैसे उन्हें बदलना है, ये पूरी श्रृंखला का हमारा जो है वो आस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आज बातचीत करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स पर एक बार फिर से, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवारी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक और लहर चल पड़ी है सिस्टर शिवानी, और हमारे पास जिस तरह के मेल्स भी पहुंचने लग गए हैं, बार बार हम यही कहते हैं आप ही का मंच है तो फिर अपने मंच पर खुले मन से बात करते हैं, तो अब ढेरों बिलीफ सिस्टम्स आने लग गए हैं। और फिर ये कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है या ये ट्रुथ है। आपने एक बात हमें कही थी, अगर पिछली कड़ी को याद करें, कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग जो है वो ठीक है, अच्छी की फीलिंग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं है, मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक है। और अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, चेक द बिलीफ सिस्टम। बहुत से लोगों ने किया है। अब ये बिलीफ सिस्टम जो है, जो जिस पर मैं काम कर रही थी, वो वर्क कैसे करता है, चेंज कैसे करना है, ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा और इस पर हम डेफिनेटली मतलब इस पर डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये बिलीफ सिस्टम, जैसे कोई भी है, अगर मेरा कोई भी बिलीफ है, वो मेरी हैप्पीनेस को कैसे ले लेता है।
1: जो बिलीफ सिस्टम है उसी के आधार पर ही थॉट्स क्रिएट होंगे ना। लेट्स से चलो हमने पिछली बार कई बड़े बड़े बिलीफ्स, छोटे छोटे सिंपल बिलीफ देखते हैं। इवन ए सिंपल बिलीफ लाइक आज के समय में चिंता होना तो नेचुरल है, कि तनाव तो नेचुरल है। अब ये मेरा बिलीफ है कि तनाव तो नेचुरल है, तो सारा दिन में जितनी बार भी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी या टेंशन या वरी, आई विल एक्सेप्ट इट एज
0: ये कुछ गलत नहीं हो रहा,
1: ये गलत नहीं हो रहा, ये नेचुरल है,
0: डिस्टरबेंस इज ओके,
1: इज ओके। एंड फिर मैं अपने आप को छोटी छोटी बातों में टेंस्ड होना भी परमिशन दे देती हूँ कि इट इज ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अलाउड टू स्मोक, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी उसके बारे में, स्मोकिंग तो मेरे लिए ठीक है, इट्स अलाउड टू डू इट, तो आई डू इट वेरी इजिली। लेकिन जो नहीं करता है तो वो नहीं करता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक। सिमिलरली इफ आई क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम, पीस इज नेचुरल। अभी तक मेरा बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल,
0: एंगर, छोटे छोटे एंगर तो ठीक है ना?
1: तो अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है एंगर इज नेचुरल, तो फिर मैं गुस्सा करने से पहले दो बार सोचूंगी तो नहीं ना, एंगर इज नेचुरल, तो थॉट कैसी क्रिएट होगी वैसे ही होगी, फिर वो आगे बिहेवियर में आएगी। अब एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एंगर इज नेचुरल के साथ हम कहाँ पहुंचे। गुस्सा करने की हमें आदत सी पड़ती गई और हर बार करके मेरे अंदर ही वो दर्द क्रिएट हुआ। एक दिन के लिए एक्सप्लोर करें एक नया बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इज पीस इज नेचुरल। और कैसे पता चलेगा विच वन इज नेचुरल, जो हमें कंफर्टेबल फील करता है। आज भी कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन हर एक को अच्छा क्या लगता,
0: पीस, शांति मांग ही रहे होते ना, ढूंढ रहे होते।
1: तो अभी हम शांति मांग रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है कि शांति हमें मांगनी है, शांति हमें कहीं बाहर से, खुशी भी हमें बाहर से ढूंढनी है। अब मेरा ये बिलीफ है कि खुशी बाहर मिलती है, तो मैं ढूंढूंगी कहाँ, बाहर ही ढूंढूंगी। मैंने ये तो बिलीफ कभी क्रिएट ही नहीं किया कि खुशी तो मेरी अपनी इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट है। तो जिस क्वालिटी का बिलीफ, उसी क्वालिटी की फिर थॉट क्रिएट होती। तो एक दिन हम एक सिंपल न्यू बिलीफ से एक्सप्लोर करते, पीस इज नेचुरल, एंगर इज अननेचुरल, लेकिन एंगर पे नहीं मनन करेंगे, तो हम कहते पीस इज नेचुरल, पीस इज माई नेचर, हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज माई नेचर। तो ये बिलीफ लेकर अब सारा दिन चलो, तो एक दिन में मैजिक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ हमारे थॉट पर वर्क करेगा। अब मुझे अगर गुस्सा आएगा, या अगर मैं गुस्सा, सी अभी तक गुस्सा आएगा तो गुस्सा आएगा नहीं, अब अगर मैं गुस्सा करूंगी तो आई विल इमीडिएटली टेल माई सेल्फ, गुस्सा मेरा नेचुरल नहीं है।
0: Oh, amazing, मैं, you know, गुस्सा आएगा मतलब क्योंकि कोई और
1: देखो, हाउ डीप रूटेड इट इज, बट नाउ इमीडिएटली वी कैन चेंज। गुस्सा अब जब हम क्रिएट करेंगे तो हम तुरंत अपने आप को कहेंगे दिस इज नॉट नेचुरल। अभी तक पहले मैं कहती थी ये तो करना ही था ना, तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन था मेरे पास करने के लिए, तो मैंने वो संस्कार पर वर्क नहीं किया। अब हम कहेंगे कि नहीं, मुझे आया लेकिन स्टिल दिस आई कुड हैव डन विदाउट दिस, इनफैक्ट आई वॉन्ट टू डू इट विदाउट दिस. तो धीरे धीरे मेरा अटेंशन होगा उस पर, धीरे धीरे मेरा थॉट चेंज होगा और फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे बिहेवियर में आएगा. लेकिन गुस्सा जायज़ है, गुस्से से ही काम होगा, गुस्सा तो नेचुरल है, तो देन माई थॉट प्रोसेस विल वर्क ओनली.
0: इनफैक्ट अगर हम देखें बिलीफ जो है वो एक थॉट ही तो है.
1: इट इज बट वेरी
0: इतना रीस्टेटेड,
1: इट इज अ डीप रूटेड फाउंडेशन थॉट जिसके ऊपर से बेसिस पर
0: छोटे-छोटे और थॉट्स निकलते हैं.
1: एब्सोल्युटली, इसीलिए वो फंडामेंटल की क्वालिटी और भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती कि उसके आधार पर ही ये क्रिएट होंगे. अब जो इस थॉट को लेकर या इस बिलीफ को लेकर चलेंगे एंगर इज नॉट हेल्दी या एंगर के बिना काम हो सकता है, तो उनको जब भी गुस्सा आएगा वो तुरंत किसको देखेंगे? अपने को देखेंगे, अपने पर काम करेंगे और धीरे धीरे वो बिलीफ फिर उनकी डेस्टिनी बन जाएगा कि एंगर के बिना प्यार से काम करेंगे. हो सकता है लेकिन जब तक उधर ही चेंज नहीं किया इट विल नॉट वर्क.
0: अगेन आई थिंक इट शुड बी बिलीफ. My belief leads me to destiny.
1: Yes. It is. Belief creates thoughts and then thoughts leads to destiny. Absolutely.
0: तो somewhere ये जो belief system की बात करते हैं, कई सारे हमने beliefs लेकर देखे थे, उन्हें एक्सप्लोर किया था, आगे आने वाली कड़ियों में भी हम करेंगे कि क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स को देख रहे हैं कि दिन भर में मेरा इंडेक्स जो है वो स्टेबल है या कहाँ कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है. जो हमने कई चीजें देखी थी जो बिलीफ सिस्टम ही थे वो एक्चुअली कि मेरी हैप्पीनेस किस किस पर डिपेंड कर रही थी. ना जब मैंने ये कहा कि बाहर से आनी है तो मैंने देखा कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ मुझे हैप्पीनेस मेरे डिपेंड करती थी. मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया. आई डोंट नो डीप रूटेड गया कि नहीं, लेकिन ये एक थॉट, एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया एक्चुअली कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है.
1: अभी तक था साधनों से खुशी मिलेगी, अब हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है. दो बिलीफ सिस्टम
0: साधन है या नहीं है,
1: डिपेंडेंसी नहीं है उस पे. मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी अगर मेरे पास मोबाइल आज नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी मेरा मोबाइल अगर बाकियों के हिसाब से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है. साधन यूज करने के लिए है, लेकिन अगर वो साधन ही मुझे डिस्टर्बेंस का कारण बने तो वो बने तो लाए तो हमने सोचा था कि ये खुशी देंगे, लेकिन ये ही और ही. तो जैसे ही हम अपने बिलीफ्स को चेक करेंगे, अब नए बिलीफ के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें कि साधन है यूज करने के लिए, साधन कंफर्ट देते हैं, खुशी नहीं क्रिएट करते. नाउ एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस एंड फिर अगर कंफर्टेबल लगे तो फिर उसको हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रुथ
0: एंड दिस इज माय न्यू बिलीफ सिस्टम.
1: दिस इज द ट्रुथ. देन एक है बिलीफ, एक है ट्रुथ
0: जो शाश्वत है, yes. जो सच है,
1: yes. जो हम कहते हैं ना, हमने कई बार कहा कि राइट और रॉन्ग एक्चुअली क्या है. तो राइट और रॉन्ग, यस वी से इट्स रिलेटिव, बट एक्चुअली इट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक मी कंफर्टेबल, दैट इज ट्रुथ फॉर मी. तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड इफ इट मेक्स मी कंफर्टेबल देन इट्स नो लॉन्गर अ बिलीफ, दिस इज द ट्रुथ फॉर मी, यस दिस इज व्हाट इज नेचुरल, फिर हमारे जीवन के वो जो फाउंडेशन लेयर है वो थोड़ी सी सेट होती
0: है. समवेयर वी आर रियली रीचिंग आउट टू द क्रक्स कि क्या है वो चीज जो अभी भी हम कहते थे ना कि वो फीलिंग या वो थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि वो नहीं चेंज हो पा रहा, क्योंकि डीप रूटेड मतलब जीवन भर हम उस पर चले होते हैं. एक और अब बिलीफ सिस्टम है या एक ट्रुथ है, क्या है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर रही होती है, या हम कहते हैं कि वी गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट एंड दैट इज व्हेन वी टेक अ ब्रेक एंड वी गो ऑन हॉलीडेज, या हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से होता है, चाहे वो फिल्म्स के माध्यम से है, या किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं. यू नो दिस एक्चुअली गिव्स मी व्हाई वी go for movies.
1: Yeah.
0: You know, why we watch television also?
1: Why do we watch?
0: Because it gives us somewhere, you know, we feel good.
1: See, why do we watch television? Yeah, why do we watch a movie? Yeah, why do we want to go for a holiday? कि कहीं ना कहीं जो मेरे thoughts चल रहे हैं, उनकी quality बहुत pleasant नहीं है मुझे. Then I say,
0: take a break. You know, every time you're stressed out, go and take a break.
1: Absolutely. तो take a break क्या करना है actually मुझे? मैं चाहती हूँ कि मेरे वो वाले जो thoughts हैं, वो चले जाएं एंड आई कैन यू नो बी मेंटली वेरी रिलैक्स्ड. लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब करने से इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गो फॉर अ हॉलिडे, टू वॉच अ मूवी, टू गो वॉच टेलीविजन, व्हाटएवर, लेकिन विद फुल अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या क्या फ़ायदा है. हम सोच रहे हैं ये करने से खुशी मिलेगी, वो हमें अपने आप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये करने से खुशी मिलती है आपको, खुशी आप क्रिएट कर पाते हैं. एक्चुअली अगर आप थोड़े दिन ध्यान से अपने आप को देखेंगे तो जितनी देर हम कुछ और करते हैं, हमारा मन वो हमारी थॉट, सपोज आज मेरा ऑफिस में किसी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन माई माइंड, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैं कल, अब मैं घर आई मैं टीवी ऑन कर दिया, राइट, टीवी में कुछ और टोटली डिफरेंट आई एम वॉचिंग, तो उतनी देर के लिए वो थॉट्स जो मेरे वो चली गई, तो क्योंकि वो थॉट्स चली गई तो मुझे लगा वो टीवी का वो प्रोग्राम मुझे खुशी दे रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ने क्या कर दिया था, मेरी वो जो पेनफुल वाले थॉट्स थे सारे, वो पेनफुल वाली थॉट्स थोड़ी देर के लिए वो रुक गई, तो मुझे तो आई फील बेटर, क्योंकि वो पेनफुल वाली थॉट्स तो मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए आई फॉरगॉट अबाउट इट, तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम ने मुझे खुशी दी, आई हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रोग्राम ने मुझे खुशी नहीं दी, वो थॉट्स को थोड़ी देर के लिए आउट कर दिया, जैसे ही प्रोग्राम ऑफ होगा वही वाली थॉट्स
0: वापस आने वाले
1: हैं, वापस आ जाएंगे, कितनी देर प्रोग्राम देखेंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी बार हॉलीडे पर जाएंगे, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ अवॉइडिंग द इनर वर्क, क्योंकि हमें लगता है बस ये थोड़ी देर देख लिया वो सारी बातें भूल गई, एंड हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, कोई लोग उसके लिए शॉपिंग जाते हैं, कोई लोग
0: अपना
1: उसके
0: हर्ट लिए दूर करने के लिए
1: भूलने के लिए, भूलने सी दैट इज द डिफरेंस, एक है भूलना एक है दूर करना, एक है उसको खत्म कर देना, तो कोई भी ऐसे माध्यम यूज करने से वो खत्म नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, क्योंकि एक और मीडियम आपके माइंड के ऊपर ओवर पावर करता है, तो एक यस द बेनिफिट इज देयर कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने वो थॉट्स को भूल जाती हूँ, लेकिन साथ साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम मेरे माइंड के ऊपर ओवर पावर कर देता है, एक तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ ये सीखने की कि कैसे मैं अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लूँ, ताकि मेरा मन के ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं हो, लेकिन जितनी देर हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी भी दिन अपने आप को वॉच करिएगा कि आपका माइंड टोटली उसके अंदर उसके साथ हो जाता है, अगर वहां कोई रो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे पर है, वहां कोई लड़ रहा है उसका इफेक्ट
0: कंप्लीटली हावी हो चुका होता है,
1: अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली कि मेरे मन की अपनी जो पावर है थॉट क्रिएट करने की वो फॉर द टाइम बीइंग पूरी बंद हो चुकी है, ये सिचुएशन जो इस टीवी स्क्रीन पर आ रही है ये सिचुएशन मेरे मन की थॉट्स को क्रिएट करती है, यहाँ मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है कि सिचुएशंस क्रिएट थॉट्स, दिस इज वेयर बिकॉज आई सी इट हैपनिंग प्रैक्टिकली कि मैं अपने मन का कंट्रोल पूरी तरह से उस सिचुएशन को जो अभी तो अक्रॉस द स्क्रीन है लेकिन उस सिचुएशन को पूरी तरह से दे देता हूँ, वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ, तो इतना मेरा मन पूरी उसके अंदर इनग्रोस्ड हो जाता है, तो उतनी देर क्या होता है मेरी माइंड की क्रिएटिविटी जो हम कह रहे हैं कि हमारे मन की इतनी पावर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन हमारे माइंड के अंदर पावर है अपने आप की थॉट क्रिएट करना, कि भले कोई सारे भी रो रहे हो मेरे आसपास मेरे मन के अंदर फिर भी ताकत है कि मैं उस समय स्टेबिलिटी की थॉट क्रिएट कर सकूं, लेकिन जितनी देर ये हम टेलीविजन या मूवी देख रहे हैं उतनी देर हमने क्या किया अपनी मन की पावर को दबाते गए, तो एक चीज है जिसको हमें धीरे धीरे से एक्चुअली एम्पावर करना है लेकिन हम उसको रोज और ही दबा देते हैं एंड रोज उसकी क्रिएटिविटी को फिनिश करते हैं,
0: क्रिएटिविटी टू क्रिएट माय ओन थॉट्स,
1: क्रिएटिविटी टू चूज माय ओन थॉट्स, क्रिएट तो हम कर ही रहे हैं, तो एक तरफ से हम वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर क्रिएटिविटी को अवेयरनेस के साथ हम अपनी थॉट्स क्रिएट करें और दूसरी तरफ से हम अपनी ही क्रिएटिविटी को खत्म करते जाते हैं, तो जहां तो हम एक तरफ से बात करते कि कोई भी सिनारियो में हमें डिटैच्ड होकर रहना है ताकि सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, पर अभी तो टीवी और मूवी का ही प्रभाव इतना पड़ रहा है,
0: पर उसमें मजा आ रहा होता है ना, उसमें वी गेट सो इन्वॉल्वड एक्चुअली, चाहे वो नॉवल की बात करते हैं, किताब की बात कर रहे हैं या फिर हम मूवी की बात कर रहे हैं या सीरियल्स की बात कर रहे हैं,
1: यस,
0: तो एक स्टिमुलेंट है, एक कहीं ना कहीं व्हाई वी लाइक इट सो मच,
1: बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट जो मेरे अंदर एक तो मेरी सी वो मेरे इनर वर्क को बंद कर देता है, आई डोंट हैव टू डू एनी इनर वर्क, जैसे कि मेरे सोचने का काम
0: वो करने लगता
1: है, वो करने लगता है, मुझे नहीं करना,
0: वो बने बनाए थॉट्स मुझे दे रहा है पैक कर करके,
1: सी नाउ दिस इज अ गुड वन कि वो बने बनाए मुझे दे रहा है, अब यही थॉट प्रोसेस
0: खाना के साथ नहीं बना रहा है मुझे पैक कर करके खाना मिल रहा है, वाह यस,
1: तो मुझे मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, समवन एल्स इज डूइंग everything for me, क्योंकि वो someone else has taken over my whole mind power. तब हम कहते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए,
0: हमने सारी इमोशंस को जी लिया. yes. एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैं इस फिल्म में इतना खुश हुआ क्योंकि मैंने सारे इमोशन को जिया.
1: सरसे अब क्या, लेकिन बट इट्स ओके, आप देखें वो सारा, बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ही इफेक्ट फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है. अभी तो थोड़ी देर टीवी के एक्टर्स थे, लेकिन फिर जब रियल लाइफ एक्टर्स के साथ होंगे हम सारा दिन, तब भी अगर मेरे माइंड ने वो पावर गिव अप कर दी है कि आई गो इन टू माई लाइफ देन विद दिस बिलीफ सिस्टम कि सिचुएशंस मेरी थॉट्स को क्रिएट करती हैं, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर वो पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है. वाई डू वी से इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, कहते हैं ना इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कितना है आज के बच्चों पर. सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया?
0: ओह, इट मींस यू नो लाइक वो इतना स्ट्रॉन्ग आपका हैबिट बन जाती है,
1: क्योंकि आपके माइंड की थॉट को क्रिएट कर रही है ना. आप एक पर्टिकुलर सीरियल, एक
0: कार्टून देख रहे हैं बच्चे कंटिन्यूअसली. yes.
1: अब कार्टून में भी आज अगर वायलेंस है, यू नो कार्टून में भी वायलेंस हो गया है, तो मैं वायलेंस देखता जा रहा हूँ. इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग थॉट्स. अब वो वायलेंस की इन्फॉर्मेशन लेते गए उसी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट होती गई, और हर रोज देखते देखते देखते हर रोज देख रहे हैं. तो वो मेरा क्या बनता जा रहा
0: है?
1: तो वही मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहा है, वही मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आता जा रहा है. तब कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया.
0: Oh, we really need to see. Actually, if I repeat it, it'll become more comfortable for me. कि मैं आज कोशिश ये कर रही थी कि अपने thoughts खुद create करो, right? लेकिन मेरे belief systems या वो belief जो मेरे साथ चल रहा था, वो एक thought इतना strong होता था कि उसको मैं overpower नहीं कर पा रही थी, नया thought नहीं create कर रही थी. और आज मैंने अपने आप को ऐसी situations, ऐसे माध्यम दिए, चाहे वो television है, चाहे वो serial है, film है या novel है, कि उस हर सिचुएशन ने मेरी क्रिएट करने की, थॉट क्रिएट करने की, सही थॉट चूज करने की जो पावर है, उसको कुंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया.
1: एब्सोल्युटली. एंड उसमें भी अब क्या हो रहा है,
0: क्वालिटी,
1: इट इज हार्मफुल. यस. एंड इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग व्हेन क्वालिटी क्या है जो आप रोज देख रहे हैं. जब हमें ये समझ में आता है कि ये मीडिया हमारे थॉट पावर को कितना डीप इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह का प्रोग्राम, किस क्वालिटी का प्रोग्राम अंदर फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी थॉट्स को क्रिएट करना है. अब मेजॉरिटी जो हमारे सीरियल्स हैं या सोप ऑपरा है, उसमें हर एक दूसरे को या तो चीट कर रहा है, कोई किसी का विश्वास तोड़ रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि दे विल से दिस इज व्हाट सेल्स. अगर सब कुछ हम उसमें अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो हु इज गोइंग टू वॉच.
0: और ऊपर से कई बार तो ये भी कहा जाने लग गया कि जो हो रहा है समाज में उसी का आईना है.
1: या लेकिन अगर कहीं थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है सपोज, लेकिन इतने सब लोग अगर उसको रोज देखते जाएंगे एंड दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन माय थॉट्स, तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में धीरे धीरे
0: होना शुरू हो जाएगा.
1: क्योंकि वो मेरे मन में होना शुरू हो गया. टीवी का इम्पैक्ट घर पे नहीं है, टीवी का इम्पैक्ट हर एक के मन पर है, और फिर वो हर एक की सोच वैसी बन. अगर मैं रोज एक सीरियल देखूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज तो घर के अपने ही परिवार वाले घर वालों को धोखा दे रहे हैं, अगर मैं रोज रोज रोज ये देखूं, विल इट नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय थॉट?
0: डेफिनेटली. इवन न्यूज को भी अगर हम देखते हैं हर रोज, चाहे वो पात्र बदल जाए, चाहे वो लोग बदल जाए, लेकिन वो न्यूज इतनी यही वाली हिट कर रही है,
1: वायलेंस वाली, फियर वाली, तो वो मेरी थॉट्स पर क्रिएट होगा. अगेन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस प्रोग्राम. क्यों अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज? क्योंकि यहाँ हम एक डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं. अब जो एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे कि एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नेचुरल, फिर सुन सुन के क्या हुआ, उनकी थॉट पर उसका इफेक्ट पड़ा. एंड मेनी पीपल सेड लेट अस एक्सप्लोर कि गुस्से के बिना भी काम हो सकता था, लेकिन रोज अगर सीरियल देखेंगे जिसमें गुस्से से काम हो रहा
0: तो
1: है,
0: वो गुस्से पिक्चरें अभी तक यू नो लाइक ये जो बात है कि अंडरडॉग का जो वो होता है कि उसका जो है उसका वायलेंस, उसका दुख, उसका सब कुछ,
1: इट इज अ डायरेक्ट
0: ग्लैमराइज किया जाता
1: है. एब्सोल्युटली. तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना डीप इन्फ्लुएंस करता है.
0: यू नो इनफैक्ट आई हैड दिस मेजर बिलीफ सिस्टम कि जो पैसा है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है. पैसा इज सिन. And this is what the belief system had because of the films.
1: तो भले आज हम टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, और फिर हम सिर्फ अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे, जितने छोटे हैं उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी तो अभी पावर ऑफ द माइंड डेवलप हो रही है कि कैसे थॉट्स क्रिएट करें।
0: और बड़ी बात आज यहाँ क्लियर ये होती है शिवानी कि ये हम सब कहते आ रहे हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए इतनी, टीवी इतना मत देखो। क्यों कहते हैं हम माँ बाप अपने बच्चों को? क्या हमें रीजन पता था? लेकिन आज अपने लिए भी तो रीजन पता चला। हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो देखना ही पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, हमें न्यूज़ तो देखनी है ना, हमें ये तो करनी है, और हम सिर्फ कहने के लिए कहते आ रहे थे आज तक अपने बच्चों को। आज अगर हम समझ के अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करें तो टीवी से हम निकल तो नहीं पाते कंप्लीट।
1: नहीं, हम बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो, क्योंकि हमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम वो उसी के सामने स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए या उनकी आईसाइट खराब होती है। वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर कितना पड़ता
0: है। हम कहते तो आते थे लेकिन कैसे पड़ता है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता था अभी तक।
1: अब अगर मैं इतनी देर टीवी, एक घंटा भी देखा सपोज, दो घंटा देखा, एंड माई माइंड बिकम्स एकदम यू नो ओवरपावर्ड बाय दैट, अब पढ़ने के लिए बैठो उसके बाद वो माइंड तो नंब अवस्था में है अभी, फिर उसको एक्टिवेट करना और फिर उसको वो कंसंट्रेशन लेवल पर लेकर, उसने कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है, उसने वो एक घंटे के लिए कंसंट्रेट
0: करना, उसके बाद आप किताब खोल के बैठे हो, कंप्यूटर खोल के भी बैठे हो, कुछ
1: नहीं समझ में। इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स लाइक फिर उसको बहुत धीरे धीरे धीरे उसको वापस उस स्टेज पर लेकर आना पड़ता है। तो टीवी का इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे, क्रिएटिविटी इन द सेंस पावर टू चूज माई थॉट्स, उस पर इम्पैक्ट डालता है। एंड टुडे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत
0: तो
1: कुछ
0: हम सब इतने अच्छा। अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक इज दैट ये तो एंटरटेनमेंट वो है जो मुझे सचमुच में आई वाज गेटिंग इन्वॉल्व्ड, यू नो, मे बी सीरियल्स थे या फिल्म्स थी, लेकिन आज जो रियलिटी शोज के नाम पर हमें देख परोसा जा रहा है और हम उसे देखने पे मजबूर हैं, क्या हमारी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम स्विच में नहीं ऑफ कर पाते उसको? सोचते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं ये क्या दिखाया जा रहा है, ये ऐसा, ये मतलब सच के नाम पे क्या दिखा रहे हैं, शादी के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी शोज में बच्चों के साथ किस तरह का उनका परफॉर्मेंसेस, मतलब कितना एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है जो हम सबको तकलीफ दे रहा है,
1: लेकिन फिर भी हम सब बैठकर
0: देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसको।
1: वो तो फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यू नो, आज का रात का एपिसोड, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वॉक

0: हमारे लिए गलत है या सोसाइटी की मर्यादाओं के हिसाब से हमने कहा कि दिस इज, आज उन्हीं बातों को बहुत ओपनली बात भी की जा रही है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसको कहीं ना कहीं एक सोशल एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, यू नो कि दिस इज ओके एंड इनफैक्ट उसको इतना जब दुनिया से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है, सारे उसको प्रेज कर रहे हैं, तो हर एक का माइंड सेट कैसा क्रिएट होता जाएगा कि दिस इज ओके, पीपल आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. एंड जितना हम उस तरह का इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, हमारी सोच की क्वालिटी क्या होती जाएगी, हमारा राइट्स और रॉन्ग जो हम कभी कभी सोचते तो थे कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, अब तो शायद वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा.
1: और सबसे बड़ी बात, हम ना देखना भी जाएं तब भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें इम्पैक्ट का नहीं पता, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माय माइंड. हम कहते हैं एक बार देखने में क्या हर्ज है, पता तो चले चर्चा किस बात की हो रही है, क्या है ऐसा इसमें, देखें तो क्या बात हो रही है, एंड देन वी स्टार्ट यू नो अप्रूविंग.
0: Yes, we do. And then our mind starts taking that, na? वो हमारे अंदर फिर, आज आप बच्चों का प्रोग्राम देख लो, तो बच्चे उसमें किस तरह से ड्रेस अप कर रहे हैं, बच्चे उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने वो गीत को कितनी बार देखा होगा कि वो लोग उसी तरह उसको इनैक्ट कर पा रहे हैं. एंड वी से इट्स ओके, ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो हमारे घर में बच्चे बैठ कर उसको देख रहे हैं. कल अगर बच्चे वही कपड़े पहनना चाहते हैं, फिर हम उसके लिए इतना बड़ा इशू बना दें घर पे. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो इन्फ्लुएंस तो हमने दिया था. और वो बच्चे ने देखा कि जब सामने उस आर्टिस्ट ने इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसको सबसे इतनी प्रेज मिली. एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस कि मुझे प्रेज चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए. और जब मैंने देखा इस चीज को एक्सेप्टेंस मिलती है, व्हाई विल आई नॉट ट्राई टू कॉपी इट इन माय लाइफ, तो फिर आई विल आल्सो वांट कि मुझे ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे बट समवेयर वी आर इंस्ट्रूमेंटल. और ये सब कुछ खुशी के लिए हो रहा है.
1: Bottom line was khushi.
0: Khushi ke liye ho raha. So it's very, very important question.
1: Entertainment industry is giving me happiness. I have to really, really check this belief system.
0: And isko kahin na kahin ghar mein ek culture create karna hoga ki kya humne watch karna hai aur kitna usko watch karna hai aur kitna uska mere upar impact padne wala hai. Ye bahut important.
1: In fact, ab hame TV dekhna hi hai, hame picture dekhni hai. Kam se kam hum ye to tay kar sakte hain कि हम क्या देखें. यू नो दिस इज समथिंग विच वी रियली हैव टू थिंक. एंड नाउ अगर आपको बच्चों को भी मना करना है कि कितना टीवी देखना है, क्या देखना है, खुद को भी कहना है, हस्बैंड को भी कहना है, यू हैव अ पॉइंट. यू नो देयर इज अ लॉजिक. टुडे यू गेट दैट लॉजिक अपने लिए भी. अब आप कन्विक्शन से कह पाएंगे, कन्विक्शन से तय कर पाएंगे कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है. कोई सवाल, कोई मन में बात उठती है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ चाहते हैं कि शेयर करें, कोई सजेशन भी उठ रहा है, स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कहीं ना कहीं एक बहुत परिवर्तन की बात है और एक ऐसा बिलीव सिस्टम कि अभी तक ये था कि टेलीविजन ठीक है, मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस हाँ नहीं देखना चाहिए, आपने कहा कि आंखें खराब हो जाती हैं शायद या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाउ मच इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग, हमें कितना हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल पूरी सिचुएशंस पे जा रहा है और हमारी हैबिट बनती जा रही है. आने वाले जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम अपने कंट्रोल देते जाते हैं फिर. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. और आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम और कई बिलीफ सिस्टम्स को देखेंगे, किस तरह से वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे मैं बदल सकता हूँ उन्हें. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जिंदगी वो है जो काम आए किसी के, वरना तो इसे जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। श्रोताओं, मानवता सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इस संपूर्ण जीव जगत में अपने लिए तो हर जीव जीता है, लेकिन वक्त पड़ने पर किसी को सहारा दे देना, किसी के लिए खड़े हो जाना, किसी की सहायता कर देना ही मानव होने की निशानी है। लेकिन वो जो अपना संपूर्ण जीवन ही दूसरों को समर्पित कर दे, महामानव है। ऐसे ही महामानव थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हमने महात्मा कहा। गांधी जी का व्यक्तित्व विराट है। पूरी दुनिया उन्हें अपना कहती है और उन्हें अपनी तरह से बांचती देखती है। अपने समय की बहुत बड़ी शख्सियत थे गांधी, और अपने समय के बाद उससे भी बड़ी शख्सियत हो गए, क्योंकि आज गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, विचार बनकर किसी मंत्र की तरह पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। अपने समय में अपने करीबी लोगों से उनका जुड़ाव भी था, तो कभी द्वंद्व भी रहा। इसी आधार पर सबने अपनी सुविधा और भावनाओं के अनुरूप गांधी जी को चुना और अपनाया। गांधी जी एक हैं, लेकिन सबके होते ही वो अलग अलग हो जाते हैं। कभी साधारण मानव, कभी असाधारण चिंतक, कभी सहृदय मित्र, कभी कठोर पति, कभी अनन्य स्नेही, कभी राजनेता, जननेता, विचारक, सुधारक, तो कभी हठी, क्रोधी, तो प्रेमी भी। लेकिन उनके इन सारे रूपों के मूल में जो जमीन थी, वो मानवता की थी। हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उन्हें गढ़ने का काम किया दक्षिण अफ्रीका ने। पीटर मॉरिट्सबर्ग के सोने प्लेटफॉर्म पर जब वो फेंक दिए गए, तब सारी रात वो सो नहीं सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका अपमान हुआ था और उनका स्वाभिमान आहत हुआ था, बल्कि वो इस सोच में थे कि इस दुनिया में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, मनुष्य मनुष्य में ऐसा भेद कैसे हो सकता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। मानवीय करुणा से भरा वो हृदय था जो मानव और मानवता को सोचता हुआ उसके पक्ष में खड़ा हुआ। उनके लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं था। उनके जीवन से जुड़े ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ प्रसंगों की चर्चा। ये घटना उस वक्त की है जब सांप्रदायिकता की आग में नुआखली झुलस रहा था और गांधी जी शांति मिशन पर निकल पड़े थे। वो एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे, प्रार्थना सभाएं करते रहे। अपने साथ वो पवित्र पुस्तकें ले गए थे, इनकी शपथ दिलाते कि लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इतना ही नहीं, वो हर गांव में कुछ दिन रुक जाते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो शपथ ली गई है उसका पालन हो भी रहा है या नहीं। एक दिन एक गांव में प्रार्थना सभा चल रही थी कि अचानक एक मुस्लिम व्यक्ति ने उन पर हमला किया। उसने उनका गला पकड़ लिया। गांधी जी लगभग मूर्छित से होने लगे, लेकिन नीचे गिरने के दौरान कुरान की एक सुंदर उक्ति उनके मुख से निकली, जिसे सुनते ही वो व्यक्ति पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत गांधी जी के पैर छुए और माफी मांगी। उसने कहा, बापू, मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर दें, मैं अब आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। आप मुझे कोई काम सौंपिए, मैं जरूर करूंगा। गांधी जी करुणा से भरकर मुस्कुराए, कहा, तुम मेरा केवल एक काम कर दो, जब तुम यहां से लौटना तो किसी से मत कहना कि आज तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी, वरना ये दंगे फिर भड़क जाएंगे। बस इतना करना कि आज जो कुछ हुआ है उसे भूल जाना। इंसानियत की चिंता में डूबी ऐसी उदार और पवित्र सोच थी बापू की।

गांधी जी कहते थे कि मैं ईश्वर को मानवता की सेवा के जरिए पाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईश्वर न तो स्वर्ग में है न पाताल में है, वो हम सब में है और मानवता से दूर होकर उसे नहीं पाया जा सकता। यही मानवता, मनुष्य मात्र के लिए करुणा का भाव उनकी प्रेरक शक्ति थी। हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में कानून के एक छात्र के रूप में गांधी जी सूट बूट पहनते थे। 15 अप्रैल सन 1917 को जब वो चंपारण पहुंचे थे और दोपहर 3 बजे गाड़ी से उतरे, तब भी पूरी काठियावाड़ी पोशाक में थे, लेकिन आगे के जीवन में हम गांधी जी को सिर्फ धोती पहना हुआ पाते हैं और अपने जीवन के अंतिम समय तक परिधान के रूप में उन्होंने सिर्फ धोती ही पहनी। इसके पीछे भी एक मार्मिक प्रसंग है। चंपारण के किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने चंपारण की समस्याओं पर अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक टीम भेजी। इस टीम ने जो रिपोर्ट गांधी जी को सौंपी, उसमें वहां की महिलाओं की समस्याओं का कोई जिक्र नहीं था। रिपोर्ट देखकर गांधी जी ने कहा, महिलाओं की स्थिति जाने बिना किसी समाज की स्थिति हम कैसे जान सकते हैं, उसके बिना ये रिपोर्ट कैसे पूरी हो सकती है। उन्होंने इस बारे में जब पूछा तो जवाब मिला कि चंपारण एक पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां की महिलाएं बहुत संकोची और शर्मीली हैं, वो खुलकर बात नहीं करती, सामने भी नहीं आती। तब गांधी जी कार्यकर्ताओं की टीम लेकर चंपारण पहुंचे। महिलाओं से बात करने के लिए कस्तूरबा और अवंतिकाबाई गोखले को नियुक्त किया, लेकिन चंपारण की महिलाएं उनसे नहीं मिली, अपने दरवाजे तक उन्होंने नहीं खोले। घूमते घूमते शाम हो गई। बा ने एक दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सुबह से शाम हो गई, हम भटक रहे हैं, बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा। तब एक दरवाजा खुला और पानी का गिलास लिए एक महिला का हाथ बाहर आया। कस्तूरबा ने पानी पिया और गिलास लौटाते हुए कहा, दीदी हमने पानी का गिलास थामे आपका हाथ देखा है, आपने हमारी प्यास बुझाई, क्या हम आपको नहीं देख सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। अंदर की महिला टूट गई, रो पड़ी। वो उसने कहा, हमारे घर पर 3 महिलाएं हैं और पहनने के लिए एक ही साड़ी है, हम तीनों उस एक साड़ी को बांट कर पहनती हैं, अभी हम में से एक महिला बाहर गई है उसी साड़ी को पहनकर, इसलिए इस वक्त हम दरवाजा नहीं खोल सकती। कस्तूरबा रो पड़ी। उन्होंने कहा, दरवाजा बंद रखो, यही उचित है, लेकिन मैं कहूंगी तुम्हारे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, तुमने इस अवस्था में भी हमारी प्यास बुझाई। रिपोर्ट सौंपते हुए जब कस्तूरबा ने गांधी जी को यह घटना सुनाई तो उनका मन गहरी पीड़ा और करुणा से भर आया। उन्होंने अपना चोंगा उतारा और बा को दे दिया, कहा, ये उस औरत को दे देना। और उसके बाद आजीवन उन्होंने सिर्फ धोती ही पहनी। इस तरह उन्होंने एक फकीर का जीवन जिया।

करुणा गांधी जी के भीतर का मूल स्वर था। मानवता के पुजारी थे वो। उनकी चिंता सिर्फ देश की आजादी को लेकर नहीं थी, उनकी आंखों में उनके सपनों का भारत तो था ही, लेकिन हर मनुष्य के भीतर वो ईश्वर को देखते थे और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वो समाधान बनकर खड़े हो जाते थे। 1947 वो साल था जब भारत आजाद हुआ। वो संघर्ष जिसकी अगुवाई गांधी जी ने की थी, जाहिर है स्वाधीनता का स्वप्न लेकर ही इतनी लंबी संघर्ष यात्रा उन्होंने तय की थी। लेकिन 1947 के इतिहास के पन्नों में दो दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे गांधी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण को बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, उनकी करुणा के स्पर्श को महसूस किया जा सकता है। एक दृश्य में कलकत्ता में छाया घना अंधेरा है, सांप्रदायिकता की आग में इंसानियत जल रही है और गांधी जी अपनी करुणा का कोमल स्पर्श उन्हें दे रहे हैं, उनके बीच घूम घूम कर उन्हें समझा रहे हैं। और दूसरी ओर आधी रात को चमचमाती रोशनी में नहाई राजधानी दिल्ली है, जो देश के पहले स्वतंत्रता दिवस के सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही है। शानदार रोशनी, जोरदार नारे और देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू का काव्यात्मक वक्तव्य है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत में जीवन और स्वतंत्रता स्थापित हो रहे हैं और लंबे समय से शोषित राष्ट्र की आत्मा स्वतंत्रता का उद्घोष कर रही है। एक ओर जगमगाती रोशनी और दूसरी ओर सियाह अंधेरा, दो छोरों पर ये दो दृश्य हैं और स्वाभाविक रूप से गांधी जी उस अंधेरे को दूर करने के प्रयास में कलकत्ता में हैं। स्वतंत्रता दिवस के कुछ हफ्ते पहले पंडित नेहरू और सरदार पटेल का पत्र लेकर एक दूत दिल्ली से कलकत्ता भेजा गया, जहां गांधी जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं। आधी रात को दूत वहां पहुंचा, गांधी जी को उसने पत्र दिया। गांधी जी ने उसे अभी खोला नहीं, पूछा, क्या आपने भोजन किया? जब दूत ने कहा नहीं, तब गांधी जी ने उसे पहले भोजन परोसा और भोजन के बाद उन्होंने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, बापू, आप राष्ट्र के पिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वतंत्रता दिवस होगा और हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली आएं। पत्र पढ़ने के बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए गांधी जी ने कहा, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण आग्रह है। जब बंगाल जल रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और मैं कलकत्ता के अंधेरे में उनकी बातें, उनके दर्द सुन रहा हूं, ऐसे में मैं कोई जश्न कैसे मना सकता हूं? बंगाल में शांति की स्थापना के लिए मुझे यहीं रहना होगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। अगली सुबह वो दूत वापस जाने को तैयार एक पेड़ के नीचे खड़ा था। गांधी जी उसे विदा करने आए, तभी एक सूखा पत्ता पेड़ से गिरा। गांधी जी ने उसे उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और कहा, तुम वापस दिल्ली जा रहे हो। मैं एक शक्तिहीन और निर्धन आदमी हूं, क्या दे सकता हूं? पहले स्वतंत्रता दिवस के उपहार के रूप में तुम ये सूखी पत्ती पंडित नेहरू और सरदार पटेल को मेरी तरफ से दे देना। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वो पत्ती गीली हो गई। गांधी जी ने स्निग्ध मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो ईश्वर कितने महान हैं। वो नहीं चाहते थे कि गांधी एक सूखा पत्ता उपहार स्वरूप भेजे। उन्होंने इसे गीला कर दिया। अब ये पत्ता भीगी मुस्कान से चमक रहा है। इस पत्ते को वो मेरे आंसू भरे उपहार के रूप में ग्रहण करें। इतना कहकर गांधी जी मुड़े और चल पड़े अपने अगले गंतव्य की ओर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ला, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। देश को आजाद हुए अभी कुछ साल ही बीते थे। तत्कालीन रेल मंत्री मुंबई जा रहे थे। उनके लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर उन्होंने कहा, बाहर बहुत गर्मी है लेकिन ये डिब्बा काफी ठंडा है। उनके पीए ने जवाब दिया, जी सर, गर्मी तेज थी इसलिए इसमें कूलर लगवा दिया है। कूलर लग गया है? मुझे बताए बिना? आप लोग कोई काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्या बाकी जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? ये बहुत गलत काम हुआ है। आगे गाड़ी जहां भी रुके पहले ये कूलर निकलवाइए। इस तरह मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलवाने के बाद ही फिर गाड़ी आगे बढ़ी। आज भी उस डिब्बे में जहां कूलर लगा था लकड़ी जड़ी हुई है, जो उनके ऊंचे आदर्शों की याद दिलाती है। अपने समय के वो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का पूरा जीवन ही ऐसी अनेक प्रेरक घटनाओं से भरा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इस छोटे से शहर में उनकी स्कूली शिक्षा कुछ विशेष नहीं रही। कुछ समय बाद उन्हें वाराणसी अपने चाचा के घर रहने के लिए भेज दिया गया। घर पर सब उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। वे कई मील की दूरी पैदल नंगे पांव ही तय कर स्कूल जाया करते थे। भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थीं, तब भी उन्हें ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता था। जैसे जैसे उनकी समझ विकसित होने लगी उन्हें पराधीन भारत की दशा बेचैन करने लगी। जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे राजाओं की निंदा करते हुए भाषण दिया था तो वे इस निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। उस समय उनकी उम्र मात्र 11 साल थी, लेकिन तभी से देश की सेवा का संकल्प उन्होंने ले लिया था। असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया और 16 साल के नन्हे यानी लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया। उनके इस निर्णय से परिवार में हड़कंप मच गया। मां की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन शास्त्री जी को तो भारत मां की उम्मीदों पर खरा उतरना था। गांधी जी के विचार उन्हें पुकार रहे थे। सभी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे। छोटे कद के कमजोर से दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री अपने संकल्प के साथ अडिग खड़े रहे। उनके करीबी भी ये जानते थे कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय बदलेंगे नहीं। बाहर से कमजोर दिखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह

वाराणसी के काशी विद्यापीठ में पढ़ते हुए शास्त्री जी महान विद्वानों और देशभक्तों के संपर्क में आए और इस वातावरण का प्रभाव ही था कि वे आजीवन राष्ट्र सेवा का व्रत ले चुके थे। वैसे बचपन से ही उनके विचार दूसरे बच्चों से अलग और सुलझे हुए थे। तभी तो जब वे मुगल सराय के स्कूल में पढ़ते थे तब उनका नाम लाल बहादुर वर्मा पुकारा जाता था। तब उन्होंने अपने हेडमास्टर से निवेदन किया कि उन्हें लाल बहादुर वर्मा न कहकर केवल लाल बहादुर ही पुकारा जाए। जब उनके हेडमास्टर साहब ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तब नन्हे से लाल बहादुर ने जवाब दिया, सर मेरा मानना है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और अपने नाम से होनी चाहिए, जाति और धर्म सूचक सरनेम से नहीं। और कमाल की बात ये थी कि नन्हे की बातें सुन उनके हेडमास्टर वसंतलाल वर्मा ने स्वयं भी अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटा दिया। आगे चलकर विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त स्नातक की डिग्री शास्त्री ही उनके नाम के साथ जुड़ गई और उनका पूरा नाम पुकारा गया लाल बहादुर शास्त्री। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ संपन्न हुआ। दहेज के नाम पर वो एक चरखा और हाथ से बुने कुछ मीटर कपड़े लेकर आईं, क्योंकि शास्त्री जी इससे अधिक कुछ चाहते ही नहीं थे। खादी से उनका प्रेम आजीवन रहा और किफायत उनकी जीवन शैली थी। खादी के फटे और पुराने कुर्ते उनकी आलमारी में सहेज कर रखे होते थे। वो कहते, जब नवंबर का महीना आएगा ना, जाड़े के दिन होंगे, तब ये काम आएंगे, क्योंकि तब मैं इनके ऊपर से कोट पहन लूंगा। आलम ये था कि फटे कुर्तों से वो अपनी पत्नी से कहकर रुमाल बनवा लिया करते थे। उनका मानना था कि बहुत मेहनत के साथ खादी बीनी जाती है, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। दरअसल गांधी जी का प्रभाव उन पर बहुत गहरा हुआ था। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की, तब भी शास्त्री जी इस संघर्ष में शामिल हुए। स्वाधीनता आंदोलन में अपनी सक्रियता के कारण वे कुल 7 वर्ष तक जेल में भी रहे और जब देश आजाद हुआ तब उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्दी ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। सन 1951 में जब वे नई दिल्ली आए तब केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार उन्होंने संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने निभाए। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। जब वे रेल मंत्री थे तब एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग मारे गए। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका जीवन ईमानदारी और उच्च आदर्शों का एक अनुपम उदाहरण है। समय के साथ जीवन बदल ही जाता है, लोग बदल जाते हैं, यहां तक कि समय की मांग की दुहाई देते हुए लोगों के आदर्श भी बदल जाते हैं। लेकिन शास्त्री जी के मन और विचारों पर संस्कारों की जो छाप पड़ी थी वो कभी नहीं बदली। वो उन्हीं जीवन मूल्यों और आदर्शों को भीतर सहेजे अपनी रौ में चलते रहे।

1964 में नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये वो समय था जब देश सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और दूसरी तरफ भयंकर सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्न संकट भी सामने था। इन्हीं हालात में सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध आरंभ हुआ। ऐसे समय में शास्त्री जी ने दृढ़ और जबरदस्त आंतरिक शक्ति के साथ देश का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के हमलों का जोरदार जवाब दिया। भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला और भारतीय सैनिक बरकी तक जा पहुंचे। इस स्थिति में अमेरिका से चेतावनी आई कि अगर युद्ध नहीं रुका तो भारत को गेहूं नहीं भेजा जाएगा, लेकिन शास्त्री जी का जवाब था, बंद कर दीजिए हमें गेहूं देना। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर सन 1965 को दशहरे के दिन रामलीला मैदान में देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की और खुद भी व्रत रखना शुरू कर दिया। युद्ध की परिस्थितियों से उबरने और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने जनता से हर खाली जगह पर खेती करने की अपील की और अपने सरकारी आवास के लॉन में खुद भी सब्जियां बोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेहनत प्रार्थना करने के समान है और पूरा देश उनके साथ इस प्रार्थना में शामिल हो गया। वो देश में शिक्षा सुधार के हिमायती थे, रोजगार के अवसर बढ़ें इसके लिए मूल्यपरक शिक्षा पर उनका जोर था। वो कहा करते थे कि जो लोग शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, अंततः जनता ही मुखिया होती है। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए 11 जनवरी सन 1966 को ताशकंद में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश सेवा को समर्पित अपने पूरे जीवन में शास्त्री जी उदात्त निष्ठा और क्षमता, दृढ़ संकल्प शक्ति, विनम्र सहिष्णु और उच्च आदर्शों और जीवन मूल्यों से संपन्न एक महान राष्ट्र प्रेमी के रूप में पहचाने गए। सादा जीवन और ईमानदारी की अनूठी मिसाल थे शास्त्री जी। कितने यादगार प्रसंग जुड़े हैं उनके जीवन से। सरकारी खर्चे पर मिली कार का प्रयोग उनके अपने बच्चे नहीं कर सकते थे। एक बार उनके बेटे ने कार चला ली तो किलोमीटर का हिसाब कर उन्होंने पैसा सरकारी खाते में जमा करवाया। इसी तरह एक बार उनके घर पर सरकारी विभाग की ओर से कूलर लगवाया गया। उन्होंने ये कहते हुए कूलर हटवा दिया कि इलाहाबाद के हमारे पुश्तैनी घर में कूलर नहीं है, कभी धूप में निकलना पड़ सकता है, ऐसे आदतें बिगड़ जाएंगी। उनकी टेबल पर हमेशा हरी घास सजी रहती थी। वे कहा करते थे कि सुंदर फूल लोगों को आकर्षित तो करते हैं लेकिन कुछ ही समय में वो मुरझाकर गिर जाते हैं। घास वो आधार है जो हमेशा रहती है। मैं लोगों के जीवन में घास की तरह ही एक आधार और खुशी की वजह बनकर रहना चाहता हूं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।